0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Okay, confession time. The last time I was with my partner, हमारे ब्रेकअप से पहले, एंड हम दोनों ऐसे फिल्म विल्म देख कर आए थे और अंधेरा था, रात हो गई थी, हम लेट नाइट शो देख रहे थे और हम दोनों गाड़ी में थे, एंड ही जस्ट रीच्ड आउट टू मी टू किस मी. और जब वो ये कर रहा था, पता नहीं क्यों, ओके आई हैव, आज तक मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, मेरे दिमाग में गाना चला, ठीक है, विच वॉज, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली व्हाटएवर. एंड आई वाज लाइक, अगर मेरे दिमाग में ये गाना चलता रहा तो मैं ऐसे किस कैसे करूँगी. बट आई समहाउ मैनेज्ड, इट वाजंट द बेस्ट किस ऑफ माय लाइफ, बट ठीक है, हमने काम चला लिया. लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके साथ कभी ऐसा होता है दैट यू आर गेटिंग नॉटी एंड सडनली आपके दिमाग में या कोई ऑफिस की प्रॉब्लम आ जाती है या कोई कॉलेज की भसड़ याद आ जाती है या कोई ऐसा चीपड़ा सा गाना जो मुझे याद आया ऐसे याद आ जाता है एंड सडनली एवरीथिंग जस्ट रायता फैल जाता है भाई? अगर हाँ, देन आई टोटली वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो बताने के लिए यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE.

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La viva la burka. Milchi, burka.
2: Hello.
3: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये आपके हो
4: पास
2: क्या है?
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501। हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किससे पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह मचाने के लिए थोड़ी ना आता है।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं कुकड़ू।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: वैसे तो आप बहुत सीरियसली डेट कर रहे हो लेकिन सडनली यू आर क्रशिंग ऑन दिस गाय और आप अपने बॉयफ्रेंड को कतई नहीं बता सकते इसके बारे में बिकॉज दैट गाय इज नोबडी अदर देन हिज ओन डैड।
3: द सीक्रेट बॉक्स।
2: अगर आपकी जिंदगी में ऐसे अजीब कन्फेशंस हैं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफपी पर, आई विल बी हैप्पी टू टॉक टू यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर। हेलो, हाउ आर यू?
4: तो ठीक हूँ, अभी तो फिलहाल मेरी दिल की धड़कने इतनी ज्यादा तेज हो गई है, पहली बार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है।
2: यू नो व्हाट, जस्ट बिफोर एनीथिंग एल्स, तू दिए रहा,
0: यू हैव बीन रोशिफाइड।
2: डबल रोटी है?
4: अरे मैं सिंगल, अभी तो सिंगल हूँ और वो भी सिर्फ तुम्हारी।
2: क्यों?
4: मैंने ना तुम्हें एक बहुत बड़ा डीएम किया जिसमें मैंने अपने एक्स की इतने गुण गा दिए और मेरे जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसने मेरी पूरे चैट पढ़ ली और उसमें मैंने मेरे बॉयफ्रेंड की इतनी बुराई की थी कि वो बहुत बैड किस करता है, वो गुड लुकिंग नहीं है, पर वो थोड़ा उसके साथ मजा था, वो पता मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर प्लान कर रहे थे, वो बोलता मेरे को कि जब तू मेरे लिए इतना सा क्लियर नहीं है तो तेरे से फ्यूचर कैसे प्लान कर सकता हूँ। मैंने बोला यार वो मैंने झूठी स्टोरी लिखी थी, मैंने उसको बोला मैंने झूठी स्टोरी लिखी थी बिकॉज मुझे रोशी की अटेंशन चाहिए थी। तो बोलता नहीं तू रहने दे, अब तू झूठी स्टोरी, तूने तेरे फ्रेंड को मैसेज किया कि मेरे मेरे एक्स से मेरा प्रेशर हो गया। मैंने बोला वो भी झूठा था, रोशी को दिखाने के लिए कॉल आएगा तो बताऊंगी, मतलब पागल बना रही, सुना है मैंने उसको कॉल के मैसेज ही देखी हूँ। मैंने बोला चल ठीक है यार, मना लूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा।
2: You are such a rock star. So crazy. It's so bonkers. It's so wonky. मैं पहले ही रोशिफाई कर चुकी हूँ, but
4: I love you. मुझे इतनी ज्यादा कोई दुनिया में लड़की पसंद है ना, इवन मेरे एक्स को तो मुझसे ज्यादा पसंद है। हम लोगों के पास टॉपिक ही सिर्फ रोशी होता था जब हम बात करते।
2: आई डोंट इवन नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस ऑनेस्टली, लाइक यू आर सो क्रेजी। एक टाइम पे तू बोल रही है आई लव यू, व्हिच आई कैन हियर इन योर वॉइस, तो मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो रही हूँ। फिर तू मुझे बता रही है कि तेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने पढ़ लिया कि तूने क्या क्या बुराइयां की थी उसकी, तो मुझे हंसी आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा हूँ, इतना प्यार आ रहा है कि मुझे रोना आ रहा है। आई एम लाइक दिस गर्ल इज गोइंग टू ड्राइव मी क्रेजी, पागल लड़की। आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। यू एक्चुअली टुक दैट एफर्ट की इंस्टा लाइफ पे मैं बंदी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम गोइंग टू गिव रोशी माय नंबर सो दैट शी कैन कॉल।
4: एग्जैक्टली, आई लव यू टू रोशी।
2: यू आर क्रेजी मैन, मतलब मैंने दुनिया में बड़े लोग देखे हैं और बड़े आशिक देखे हैं, बट तेरे जैसा आशिक तो कोई नहीं है ब्रो।
4: सिर्फ तेरी, पता है लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, वो तो आते जाते रहते बट वो होता ना कॉन्स्टेंट, तो बस तुम
2: यार। ऑनेस्टली आफ्टर यू टोल्ड मी योर स्टोरी एंड ऑल ऑफ दिस लव, आई हैव जस्ट वन थिंग टू डू, एक बार और रोशिफाई कर दूं।
4: श्योर यार, श्योर, मैं सुनने को तैयार हूं।
2: देयर यू गो माय
0: डार्लिंग, यू हैव बीन रोशिफाइड।
4: And oh my God!
2: This is a confession which is going to stay with me. मैं किसी को मतलब पता नहीं लगने दूंगी that you actually were like telling me how awful your boyfriend is. वो तो गलती से उसने पढ़ लिया. But I hope things get better. और एक बार हो जाएंगी मेरे को DM कर देना please.
4: Okay, sure.
2: I love you very much.
4: Love you too.
2: Take care, darling. Bye. अगर आपकी भी जिंदगी में पागलपन की ये इंतहा है, why don't you hit me up? I'd love to hear your story. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So Insta, FP, whatever in your heart, just send me your number and I'll call you. लेकिन आप कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.
5: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में. अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में, क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: हमने ना एक साल पूरा डेट किया, उसके बाद वो अमेरिका चला गया मुझे डंप करने के बाद। अब वो दो हफ्ते के लिए आ रहा है यहाँ पर इन इंडिया बिकॉज उसको कोई काम है, और वो कह रहा है कि हमें डिनर पे चले जाना चाहिए और उसके बाद अगर कुछ हो जाए तो मे बी हम पुरानी स्पार्क्स रिकिंडल कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए?
1: रोशी के डीएम से
0: ये क्वेश्चन मुझसे प्रीति ने पूछा, एंड प्रीति यू डिड टेल मी कि उसने जब आपको डंप किया था काफी बुरी तरह से डंप किया था, एंड आई एम गेसिंग कि ये जो वापस आ रहे हैं महोदय फॉर दो हफ्ते के लिए, उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, ही इज जस्ट लुकिंग फॉर समवन जिसके साथ वो हुकअप कर सके। और दो हफ्ते में यार कौन डेटिंग ऐप डाउनलोड करेगा, कौन 100 बार राइट स्वाइप करेगा फिर एक अच्छी सी डेट मिलेगी, आप हो ना रेडी। तो एक काम करो, अगर आप इसे सीरियसली मिलना चाहते हो, मेरे हिसाब से तो काफी लूजर बंदा है, इसे नहीं मिलना चाहिए, बट इफ यू रियली वांट टू मीट हिम डिनर पर जाओ और उसके बाद टेक अ कैब एंड कम होम। ओके, इसके साथ ज़्यादा चिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपसे इतना प्यार करता होता तो एक साल जो अमेरिका में था तब तो उसने आपको टेक्स्ट करने की जहमत नहीं की। अब वो इंडिया आ रहा है और उसे एंटरटेनमेंट चाहिए, तब उसको आपकी याद आ रही है। ही स्पेल्स द वर्ड लूजर, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हिम। और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई दुविधा है ना, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफपी पर एंड वी विल गेट टॉकिंग, क्योंकि मैं हूँ आपकी ब्रोशी, ना मैं मिर्ची रोशी, तो कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं आना। तो सुनते रहो मिर्ची एंड आई कैच यू ऑन द अदर साइड।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब ना मैं कुछ एडवेंचरस करने वाली हूँ अपनी जिंदगी के साथ. आई एम गोइंग ऑन एन एपेटाइजर डेट. एंड आई वाज लाइक, एपेटाइजर डेट क्या होता है? आई एम हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस इज़ वन ऑफ माई रियली क्लोज फ्रेंड्स हु हैज़ डिसाइडेड कि जिंदगी में उसने इनफ बोरिंग काम कर लिए हैं. अब वो और उसका 6 महीने पुराना बॉयफ्रेंड एक एपेटाइजर डेट पर जाएंगे. तो ये वस्तु क्या होती है? यह वस्तु ऐसी चीज़ है जिसमें आप अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट्स में जाकर सिर्फ एक एक एपेटाइजर ऑर्डर करोगे और अपनी पूरी शाम ऐसे बर्बाद करोगे. माई क्वेश्चन टू हर वॉज कि जगह जगह जाकर एक जगह चिकन मोमो और दूसरी जगह वेज स्प्रिंग रोल खाने से बेहतर नहीं है कि एक जगह जाके ये सब निपटा कर यू कैन गेट नॉटी? शी वाज लाइक, रोशी, नॉटी तो सब हो जाते हैं, ऐसे एडवेंचरस होना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग यार. 2026 में यू हैव टू अप योर डेटिंग गेम यार. ये सुनने के बाद ना आई एम काइंड ऑफ हैप्पी दैट आई एम सिंगल, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट से रेस्टोरेंट जाकर एपेटाइजर नहीं खा सकती. इट्स जस्ट बहुत सारा हार्डवर्क. अगर आपने भी जिंदगी में एडवेंचर के नाम पर ऐसे एपेटाइजर डेट्स करी हैं, देन आई ऑनेस्टली रियली वांट टू नो इट फ्रॉम यू, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है करने की, लेकिन सुनने की जरूर है. सो हिट मी अप इफ यू हैव एनी सच फंकी एडवेंचरस डेट आइडिया. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Energy. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga. Milchi, burga.
1: Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।
5: हिट हिट हिट हिट गाना। हिट

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जिंदगी में क्या होता है व्हेन यू ब्रेक अप और उसके बाद रिवेंज पाने के लिए आप अपने पार्टनर के साथ या पार्टनर के अगेंस्ट किस हद तक जा सकते हो, ये हम अभी पता करने वाले हैं. क्योंकि मेरे साथ लाइन पर जो इंसान है, ही हैज़ एन एक्स रिवेंज सॉर्ट ऑफ स्टोरी टू टेल. एग्जैक्टली क्या है ये स्टोरी, सतीश हमें खुद बताएगा. हाय सतीश.
3: हाय रोशी,
2: हाउ आर यू?
3: वेरी गुड.
2: हाँ, आपसे मेरी अभी जब बात हुई थी ऑफलाइन तो यू टोल्ड मी कि आप अभी अभी एक लद्दाख का ट्रिप पूरा करके आए हो, विच इज क्रेजी.
3: Yes.
2: I'm very jealous, by the way. Just so you.
3: नहीं, jealous क्यों, आप भी आ सकती हैं.
2: ठीक है, thank you for inviting me. वैसे भी आप single हो या नहीं हो या क्या सीन है वो तो मुझे पता ही नहीं है.
3: अभी अभी अभी मझधार में हूँ.
2: मझधार में हूँ. मझधार इज द बेस्ट प्लेस टू बी इन अ रिलेशनशिप. तो एग्जैक्टली मझधार में क्यों हो आप? लेकिन
3: सीन ये है कि I was dating this girl.
2: हाँ.
3: और फिर we had a bad breakup.
2: हाँ.
3: उसने कुछ हरकतें की और हमारा ब्रेकअप हो गया.
2: हाँ.
3: फिर मुझे मेरे अंदर का जो शैतान था वो जागा.
2: हाँ.
3: बदला लेना था मुझे.
2: हाँ.
3: उसे सबक सिखाना था.
2: हाँ.
3: तो आई अप्रोच हर बेस्ट फ्रेंड.
2: ओके.
3: हाँ. और बेस्ट फ्रेंड ने भी एक्साइटमेंट में सब जगह हल्ला कर दिया.
2: अच्छा, लेकिन आपने उसकी बेस्ट फ्रेंड को अप्रोच किया क्या करने के लिए? लाइक आपका मोटिव क्या था?
3: मेरा मोटिव तो बदला लेना था.
2: और आप बदला कैसे लेते?
3: हुकअप करके.
2: मतलब कितना स्ट्रीट
3: ऑफ. हां, थोड़ा सक्सेसफुल भी हो गया. पर अब मजदार ऐसी हो गई है कि आई हैव कम टू रियलाइज दैट ये लड़की तो बहुत अच्छी है.
2: एक सेकंड, थोड़ा सा रिकैप करते हैं आपकी स्टोरी. गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ, बुरा ब्रेकअप हुआ, तो आपने सोचा रिवेंज करता हूँ बाय स्लीपिंग विद गर्लफ्रेंड की, एक्स गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड, करेक्ट?
3: जी.
2: ये हो गया आपके साथ, लाइक यू, आपका हुकअप हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब आपको गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो गया.
3: हाँ.
2: तो अब करना क्या है?
3: अब आप बताओगी?
2: मैं, अच्छा, ये जब गन में जा रहे थे आप तब तो मुझे फोन करके नहीं पूछा था कि रोशी देखो मैं ये सोच रहा हूँ कि हुकअप कर लेता हूँ, लेकिन अब जब गन मच गया है, रहते फैल गए हैं, तो रोशी आप बताओगे क्या करना है. सो ये बेस्ट फ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को बताया है कि लाइक आप दोनों के बीच में व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन?
3: अब ये तो मुझे पता नहीं है, इसीलिए तो मजेदार है.
2: अच्छा, और ये जो हुकअप वाली आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड है, इसे पता है कि आपको फीलिंग्स हो गए हैं?
3: मुझे ऐसा लगता है, वही तो सारा ये मझधार का पार्ट है सारा.
2: सो अच्छा,
3: बताया है कि नहीं बताया है, उसे मुझसे प्यार है कि नहीं है, मतलब ये फंस गया हूँ मैं.
2: तो आपने सोचा है कभी कि इस बेस्ट फ्रेंड से बात करके देखता हूँ क्या क्या करना है? क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, आपका क्लीन ब्रेकअप हो गया, आप हुकअप कर रहे थे एंड यू फेल इन लव विद योर हुकअप, विच इज नॉर्मल. लेकिन ये जो बेस्ट फ्रेंड है, अगर इसको भी आपसे प्यार हो गया है, तो इसकी जो फ्रेंडशिप है आपकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वो खत्म हो जाएगी. When your ex-girlfriend finds out that you guys were like in a hookup situation that has turned into love.
3: पर प्यार तो अंदर होता है ना?
2: नहीं, आपका मेरा प्यार

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खुशी बाबा की जय।
1: Calm down, my bhagjano. आज मैं आपको बताऊंगी how do you figure out if a woman is actually into you. तो मान लीजिए कि आप और your crush are both really good friends, लेकिन क्या वो आपको friends से ज़्यादा समझती है? There are a couple of things to watch out for. सबसे पहले, क्या उसे छोटी छोटी details याद हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में? शायद आपने कहा हो कि बचपन में आपका दोस्त होता था अविनाश, और इतने सालों बाद उसको अभी भी याद है कि आपके best friend का नाम क्या था. क्या वो आपके साथ डीप कॉन्वर्सेशंस में एंगेज कर रही है? शी इज टॉकिंग अबाउट लाइफ, शी इज टॉकिंग अबाउट योर करियर, अबाउट आप जिंदगी से चाहते क्या हैं. क्या वो नर्वस है आपके आसपास? क्या वो जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाती है आपके हॉबीज में? क्या दिन में आप कम से कम 3-4 टेक्स्ट एक्सचेंज करते हो? इज अवर बॉडी लैंग्वेज ओपन अराउंड यू? एंड ऑफ कोर्स देयर आर दीज अदर थिंग्स, जिसमें वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स देती है, वो आपके आसपास ज्यादा बन ठन कर आती है. शी ब्लशेस मोर ऑफन अराउंड यू एंड शी फाइंड्स एक्सक्यूजेस टू बी नियर यू. अगर इसमें से कम तीन तो सिम्टम्स हैं ही, देन कंग्रेचुलेशंस, शी इज टोटली इनटू यू. अब नेक्स्ट लेवल पर क्या करना है वो मैं आपको पर्सनली बताऊंगी. व्हाई डोंट यू सेंड मी योर नंबर एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

माइंडेड अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, कोई योगराज को मैं ही सिखा दे, वो घर पे आता

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: इंस्टेंट नूडल्स के जमाने में आप पहली डेट में फिगर आउट करना चाहते हो कि ये बंदा या बंदी आर दे इवन वर्थ हैंगिंग आउट विद, सेकंड डेट पर लेके जाएं या नहीं. मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सीखा है, द बेस्ट वे टू फिगर आउट अ पर्सन इज उसे अपने साथ शॉपिंग ले जाओ पहली डेट पर. इट साउंड्स रियली क्रेजी बट आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस. क्योंकि अगर आप शॉपिंग पर जा रहे हो एक बंदे या बंदी के साथ, यू विल फिगर आउट कि उसका आइडिया जिंदगी जीने का क्या है. क्या वो चिंदी चोर है? क्या उसे लगता है कि अगर कोई चीज पसंद आ रही है हर कलर में खरीद लो? क्या वो इंसान रुक कर आपसे पूछता है कि यार गर्मी तो नहीं लग रही, तेरे हील्स तो नहीं दर्द कर रहे? या फिर क्या वो लड़की अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो आपको स्पेंड करने देते जा रही है? इज शी एक्चुअली अ गोल्ड डिगर? या जब आप ऑफर कर रहे हो पैसे खर्च करने का तो भी वो बंदी आपको कह रही है नहीं यार, आई हैव माई ओन मनी एंड आई विल स्पेंड इट माई सेल्फ. एक शॉपिंग एक्सपीरियंस आपको इतना कुछ बता सकता है अबाउट अ पर्सन्स पर्सनैलिटी. ऑल्सो अगर आप उस इंसान में बहुत इंटरेस्टेड हो, इट्स अ क्रश गोइंग ऑन अ डेट विद यू, आपको उसके बारे में कितना कुछ पता चल जाएगा. डज ही लाइक वेयरिंग टाइज? क्या ऑरेंज उसका फेवरेट कलर है? रेड दुपट्टे में कितनी सही लगती है? All of this in just one experience. सोचो इसके बारे में और मुझे थैंक यू बोलने के लिए. यू कैन हिट मी अप इंस्टा.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na vidva, murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तो एक बात सुन, ये आपके हो
4: पास
2: क्या है?
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किस से पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना आता है।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं कुकड़ू।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi. R-O-C-H-I-E. Roshi, Roshi. Mirchi, Roshi.
1: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: वैसे तो आप बहुत सीरियसली डेट कर रहे हो, लेकिन सडनली यू आर क्रशिंग ऑन दिस गाय और आप अपने बॉयफ्रेंड को कतई नहीं बता सकते इसके बारे में, बिकॉज दैट गाय इज नोबडी अदर देन हिज ओन डैड.
1: द सीक्रेट बॉक्स.
2: अगर आपकी जिंदगी में ऐसे अजीब और गजीब कन्फेशंस हैं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफपी पर. आई बी हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है आर ओ सी एच आई ई, और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो, हाउ आर यू?
3: तो ठीक हूँ. अभी तो फिलहाल मेरी दिल की धड़कने इतनी ज्यादा तेज हो गई है, पहली बार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है.
2: यू नो व्हाट, जस्ट बिफोर एनीथिंग एल्स टू दी
0: एज, यू हैव बीन रोशिफाइड.
3: Oh my God.
2: तुमने मेरे को ही रोशिफाई कर दिया.
3: Thank you
2: so much. अच्छा, tell me something. Yeah. Are you single की double रोटी है?
3: अरे मैं single, अभी तो single हूँ और वो भी सिर्फ तुम्हारी.
2: क्यों?
3: मैंने ना तुम्हें एक बहुत बड़ा DM किया जिसमें मैंने अपने ex के इतने गुण गा दिए और मेरे जो मेरा boyfriend था उसने मेरी पूरे चैट पढ़ ली और उसमें मैंने मेरे बॉयफ्रेंड की इतनी बुराई की थी कि वो बहुत बैड किस करता है, वो गुड लुकिंग नहीं है, पर वो थोड़ा उसके साथ मजा आता, वो पता मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल बात नहीं कर रहा है. हम लोग फ्यूचर प्लान कर रहे थे, वो बोलता मेरे को कि जब तू मेरे लिए इतना सा क्लियर नहीं है तो तेरे से फ्यूचर कैसे प्लान कर सकता हूँ.
0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला. हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट. ओनली ऑन रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.

प्यार एक ऐसा शब्द है जिसे समझाया नहीं जा सकता, और प्यार एक ऐसा इमोशन है जिसे बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी कैटेगरी में फिट ही नहीं होता। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, एटलीस्ट हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, लेकिन उस इंसान को देखते ही हमें लगता है कि जो भी हमें परेशान कर रहा है, जिंदगी कितनी भी कठिन है, इस इंसान के होने से सब कुछ पॉसिबल है। अब आपको इस इंसान को बताने की जरूरत भी नहीं होती है कि वो आपकी जिंदगी में कितना काम और कितनी खूबसूरती से इतना पीस लेकर आते हैं। यू जस्ट नीड टू नो दैट दैट पर्सन एग्जिस्ट्स। और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा ही एक बेनाम सा रिश्ता है विद समबडी जिसे देखते ही सारे गम दूर हो जाते हैं, व्हाई डोंट यू टेल मी अबाउट दैट पर्सन इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड व्हाइल यू फाइंड मी देयर, एक चीज जो मैं कहती आई हूँ और कहती रहूंगी वो ये है कि जिसके पास लव है उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na
1: vidba la murga. Milci, murga. Hello.
2: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा है?
2: रमेश बोल रहा हूँ सर। से
1: अभी कोई और बोल रही थी।
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
1: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है, नहीं भैया नहीं नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
1: कोई बोल रहा है?
2: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा हूँ। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
9: थैंक यू
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: पकड़ा, ए पकड़ पकड़ पकड़ पकड़, इसे ना छोड़ो।
1: अरे अरे अरे भैया ना छोड़ो।
0: ओए ठहर जा बाबी।
1: अरे जा रे शराबी, क्या हो राजा?
0: गली में आ जा।
2: होली होली
0: भांग की गोली, ओ नखरे वाली
1: दूंगी मैं गाली।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खुद को डेडिकेट कर दिया
1: विंडोज स्टॉप्स गैपिंग सीपीयू बर्स्ट
0: पुरानी जींस पर मैं
1: स्टेबल ड्यूरिंग हैवी वर्कलोड
0: तो पिछले दो हफ्ते से मैं ये पुरानी जींस शो होस्ट नहीं कर रही थी
1: डायनामिक सेव्स पावर बट कॉजेस टाइम ड्रिफ्ट
0: डीएम किया डिसेबल इट
1: रन सीएमडी एज एडमिनिस्ट्रेटर
0: ओवरवेल्मड कि आपने मेरा हालचाल पूछा कि मैं
1: टाइप दिस कमांड
0: नहीं आ रही हूं
1: इट्स आल्सो मेंशनड इन डिस्क्रिप्शन
0: थैंक यू सो मच फॉर दोस स्वीट मैसेजेस एंड अगर आप मुझे गाने के फॉर्म में पूछें कि मुझे तुमसे है कितने गिले तुम इतने दिन बाद मिले
1: बेटर फ्रेम पेसिंग एंड लोअर लेटेंसी आइडियल फॉर गेमिंग और ऑडियो वीडियो एडिटिंग
0: बहुत मजा किया
1: नाउ वी विल ट्यून बैकग्राउंड सर्विसेज सेफली
0: अब गाने की बात चली रही है तो गाना सुन लेते राम लखन फिल्म का पुरानी जींस पर
1: मैं
0: चारू आपके साथ यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से सुनते रहिए मिर्ची

0: restart your system after running these. Let's use one of the most powerful professional tweaks, optimizing your DNS. Go to View Network Connections, Wi-Fi, Properties. On IPv4, choose Manual. Enter a fast DNS, primary DNS 1.1.1.1 and secondary DNS 8.8.8.8. Save it. This increases browsing speed, reduces latency, and stabilizes online gaming. Finally, let's reset Windows Automatic Network QoS behavior. Open CMD as admin and run these commands one by one.
1: कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम कब तक यूं ही
0: खामोश हैं और सहें हम All used commands are in description below.
1: दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें दीवार जो हम
0: These
1: दोनों में आज गिरा दें
0: how Windows manages download and
1: क्यों
0: upload
1: दिन में सुलगते
0: रहे लोगों
1: को बता
0: दें hidden throttling.
1: हाँ हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी
2: ये का

0: And now your Wi-Fi is completely optimized using professional grade settings that most users never touch. You should already notice faster browsing, quicker downloads, and smoother online gaming. Thank you for watching.
1: अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आर यू अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन?
2: अनलॉकिंग योर एंबिशन थ्रू टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग
1: देखो कुछ लोगों को माउंटेन पसंद होते हैं कुछ एसेंशियल आईटी पसंद होते हैं कुछ को दोनों पसंद होते हैं लेकिन बात अगर घूमने की आती है तो दोनों जगह घूमने के पैसे भी सेव होने चाहिए पूरे साल में
0: मिडिल क्लास
1: लोग जो एक ही वेकेशन के पैसे सेव कर पाते हैं तो एक जगह जाने की बात तो फिर मैं पहाड़ों पे जाती हूँ और क्योंकि मैं मई के महीने में घूमती हूँ मई मेरा बर्थडे मंथ होता है तो फिर पहाड़ों में जाना ही पसंद करती हूँ
0: स्टिक विद मी टिल द एंड बिकॉज़ वन ऑफ द हिडन सेटिंग्स आई विल शो यू इज द रियल गेम चेंजर
1: क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता था यार बचपन से ही मतलब मुझे स्विमिंग भी नहीं आती थी बड़ी हिम्मत करके मैंने 2 साल पहले
0: फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मेनी डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम्स कम फ्रॉम द बेसिक्स Always use the original USB cable or a certified high-speed USB 3.0, 3.2 cable.
1: और पैसे वाला मामला भी consider किया जाए. Avoid cheap USB hubs. For sure. और
0: plug directly into your laptop or PC port.
1: मैं आपसे share करूँगी.
0: If the drive disconnects, often try another USB port.
1: इसमें कितनी सुंदर पहाड़ों वाली feel है.
0: पुरानी jeans Go to device manager.
1: चारू आपके साथ. आप सुन रहे हैं मिर्ची.
0: In Device Manager Universal Serial Bus Controllers, expand and confirm your drive is listed under USB 3.0, 3.1, 3.2 controller, not generic USB 2.0. Turn off USB selective power saving via registry. Here's a professional fix most tutorials don't mention. We'll edit the registry to stop USB power saving at the same time.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली

कई बार हम लाइफ में बहुत स्टक हो जाते हैं, नहीं? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा लगता है फंस गए, वही सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, वही विशियस साइकिल चल रहा होता है लाइफ का। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी चल रहा था कुछ टाइम से। तो मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि हिमाचल के कांगड़ा जिले में एक धर्मकोट नाम की जगह है, वहां पे काफी सारे योगा कोर्सेज हैं। तो उसने मुझे एक पर्टिकुलर योगा कोर्स सजेस्ट किया कि तू ये जाके कर, यू माइट फील बेटर। तो मैंने ये कोर्स किया 9 दिन का। मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दैट वाज एक्सपेक्टेड वो मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, बट आई लर्न समथिंग न्यू। ऑल्सो ये जो जगह है ना धर्मकोट, इसकी क्या अमेजिंग वाइब्स हैं, करती हूँ इसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद। राइट हियर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: हेलो।
3: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये आपके हो
4: पास
2: क्या है?
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501। हाँ सर, 33501 है।
2: हेलो
4: सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है।
2: मेरी
4: बात सुनिए ना,
2: किस से पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना होता है।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं कुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

आओ वापस चलें हिमाचल के धर्मकोट। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई हर साल अपने बर्थडे मंथ में, मई मंथ में, मैं कहीं ना कहीं ट्रैवल करती हूँ और इस साल में गई थी हिमाचल के कांगड़ा जिले के धर्मकोट। एक्चुअली गई तो मैं एक 9 दिन का योगा कोर्स करने थी, जो मेरे लिए 18 दिन का साबित हुआ क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, बट आई लर्न समथिंग न्यू। एंड अदरवाइज इस जगह की बात करें अगर धर्मकोट की, छोटा सा प्यारा सा हिल स्टेशन जहाँ की ना बहुत हीलिंग वाइब्स हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली जगह हम बोल सकते हैं। एक तो ये योगा सेंटर्स है वहाँ पे बहुत सारे, मेडिटेशन सेंटर्स हैं, आयुर्वेद ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है, बहुत स्पिरिचुअल चीजें होती हैं ऐसी, होलिस्टिक हीलिंग वाली, सूफी इवनिंग्स होती हैं, कवालियाँ होती हैं, कीर्तन होते हैं। तो मेरी जो लो वाली फ्रीक्वेंसीज थी वो मीडियम तक तो पहुंच गई। तो आप भी कभी लाइफ में ऐसे स्टक हो या आपको ऐसी किसी जगह जाना हो तो दिस इज द प्लेस। ऑल्सो मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिली, खास करके फॉरेनर्स से, जिनके बारे में हम करेंगे बात थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: तो इस साल मैं अपने ईयरली बर्थडे सोलो ट्रिप पर गई थी हिमाचल के धर्मकोट।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ट्रिप पे मैंने सिर्फ मजा मस्ती नहीं, काफी मेहनत भी की। मैंने 9 दिन का एक योगा कोर्स किया जहाँ पर मैं बहुत सारे फॉरेनर्स से मिली। देखो, लोग तो बहुत मिलते हैं जब आप ट्रैवल करते हो, लेकिन कुछ लोग आपको खास तौर पे याद रह जाते हैं। तो ऐसा एक बंदा था मतेओ, इटालियन गाय, ऑलवेज स्माइलिंग। मतलब एक होता ना, किसी की स्माइल ऐसे दिल से आती है, जेन्युइन होती है, बिल्कुल कभी कोई प्रिटेंड नहीं करते वो लोग, वो वैसा था। और उसको देख के आपके चेहरे पे स्माइल आ ही जाती थी, क्योंकि वो ही हमेशा स्माइल कर रहा होता था। उसके साथ एक स्पैनिश बंदा भी रहता था, वो इतना स्माइल नहीं करता था, लेकिन दोनों बहुत गुड लुकिंग थे। तो मैंने उनको सुंदर लड़के ऐसे बोलना सिखा दिया था कि तुम सुंदर लड़के हो, पंजाबी में भी सिखा दिया था, सोने मुंडे।
0: और बदले में जब वो मुस्कुरा के मुझे चाओ बेलिस्तिमा बोलता था ना, यानी कि हाय ब्यूटीफुल बोलता था ना, तो आय हाय हाय हाय ओय होय होय होय हो जाता था। इसी बात पे मतेओ के नाम, वो इटालियन बंदे के नाम, ये गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

One of the most beautiful things about traveling is meeting new people. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और इस साल अपने ईयरली बर्थडे सोलो ट्रिप पर मैं गई हिमाचल के धर्मकोट, जहाँ पर मैंने काफी मेहनत भी की क्योंकि मैंने एक योगा कोर्स किया. एंड इस कोर्स में आई मेट दिस गर्ल कॉल्ड एलिसा, जिसकी लाफ्टर इतनी इन्फेक्शियस, कंटेजियस, क्या बोलेंगे, ऐसी थी ना, वो ऐसे ऐसे करके हंसती थी और आप उसको हंसता सुनो आपकी अपने आप हंसी निकल जाती थी. इतनी प्यारी बंदी वो बिलोंग करती है सिएटल से, जिस जगह पे मैं कभी गई नहीं, लेकिन आई हैव दिस स्पेशल अटैचमेंट टू दिस सिटी बिकॉज 90s से स्लीपलेस इन सिएटल मेरी मोस्ट फेवरेट मूवीज में से एक है. आपने अगर ये मूवी नहीं देखी है प्लीज देखो यार, इतनी प्यारी फिल्म है ना ये. पूरी फिल्म में हीरो हीरोइन जो है वो मिलके भी नहीं मिलते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब मिलते हैं तो एक दूसरे के हो जाते हैं. आपने अगर मूवी देखी है तो आपको पता है मैं क्या कह रही हूँ, नहीं देखी है तो देखो स्लीपलेस इन सिएटल. फिलहाल के लिए ये गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं.

मैं और मेरी ट्रैवल स्टोरीज। हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो इस साल अपने बर्थडे वेकेशन पर मैं गई हिमाचल के धर्मकोट और वहाँ की स्टोरीज आपसे आज शेयर कर रही हूँ। इस ट्रिप पे मैंने एक योगा कोर्स भी किया एंड वहाँ पे मैं बहुत अमेजिंग लोगों से मिली। एंड वन सच पर्सन वॉज मार्टिन, अमेरिकन गाय, मिड 60s में डॉक्टर, और योगा कोर्स तो वो पूरे एंथुजियाज्म के साथ कर ही रहा था। अदरवाइज भी वो इतना एनर्जेटिक था भाई। हमारा ना योगा कोर्स बहुत टायरिंग था जो क्लासेस होती थी, लेकिन ये बंदा थकता नहीं था। वो क्लासेस के बाद भी हमारी तो टाइम टाइम फिस हो जाती थी। ये जाके एक्सप्लोर करता रहता था इतने कैफेज, कोई और वर्कशॉप हो रही है, कोई और क्लास हो रही है, वहां पे भी जाता था। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ही वॉज डूइंग, वो सीख रहा था इंडियन क्लासिकल डांस, ओडिसी डांस, क्योंकि 2 महीने बाद उसकी डॉटर की शादी है और उस शादी में वो ये इंडियन क्लासिकल डांस परफॉर्म करेगा। ये कितनी खूबसूरत बात होती है ना, आप किसी के कल्चर से कुछ सीख रहे हो, वो आपके कल्चर से कुछ सीख रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स एवर। तो मार्टिन ने तो मुझे बहुत इंस्पायर किया। और ये शादी के संगीत टाइप का गाना हम सबको खुश करने वाला है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: क्या बना?
2: मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
4: हाँ जी बोलिए।
5: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
4: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस
6: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
4: कौन बोल रही है?
5: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
4: क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
7: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
4: हेलो कौन बोल रहा है?
5: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
4: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
6: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
4: हेलो मैडम।
5: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
4: कौन बोल रहा है?
5: रमेश बोल रहा हूँ सर। से
4: अभी कोई और बोल रही थी।
5: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
4: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
8: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
4: कौन बोल रहा है?
5: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
4: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
9: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
4: कौन बोल रहा है भैया?
5: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
4: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
5: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
4: कोई बोल रहा है?
5: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
10: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
11: थैंक यू।
12: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना, हर बार मैं सोचती हूँ इस बारे में बात ना करूँ, लेकिन इन चीजों के बारे में अगर बात न की जाए तो फिर वो सही बात नहीं है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो कचरा फैलाते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, सिविक सेंस जिनमें नहीं है, जैसे चिप्स चॉकलेट खाया, रैपर पैकेट वहीं फेंक दिया, पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, बॉटल वहीं छोड़ दिया। कितना टाइम और एफर्ट लगता है कि आप उन चीजों को अपने बैग में रख लें, अपनी गाड़ी में रख लें, अपने पास रख लें, और फिर जहां भी आपको डस्टबिन दिखे वहां फेंक दें। कितना ही टाइम एफर्ट लग जाता है। उसके बाद साउंड पोल्यूशन, बड़े बड़े स्पीकर्स लेके लोग टूरिस्ट प्लेसेस पे, पब्लिक प्लेसेस पे घूमते हैं, ऊंची ऊंची आवाज करके गाने सुनते हैं, खा पी के हुल्लड़ करना, आधी आधी रात को चिल्ला रहे हैं। भाई वो जगहें जो हैं, टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, पहाड़ों की खास करके मैं बात कर रही हूँ, वो बहते पानी की, साए साए करके जो हवाएं चलती हैं उसकी, पक्षियों के चहचहाने की, वो आवाजें सुनने की जगह है। शोर शराबा हुल्लड़ नहीं। आई होप लोग ये बात समझें, इन पे अमल करें। फिलहाल आप एक काम करें, ये गाना सुने पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

जिंदगी के सफर में कई बार सफरिंग इतनी बढ़ जाती है कि ट्रैवल वाला सफर करना पड़ता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ट्रैवलिंग इज थेरेपी, इट्स मेडिसिन। और मैंने आपसे शेयर किया था ना कि मैं तो एक टाइम पे ऐसी होती थी, मुझे लगता था भाई ट्रैवल तो फैमिली के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, ऐसे सोलो कैसे ट्रैवल करते हैं। लेकिन फिर जब सर्कमस्टांसेस की वजह से अकेले ट्रैवल करना शुरू किया, उसके बाद से तो अकेले ही ट्रैवल करती हूँ। कई सालों से काफी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। हाँ, साल भर पैसा सेव करना पड़ता है, काफी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन दैट ट्रैवल इज वर्थ इट। और अकेले ट्रैवल करना तो आपको इतना वाइजर बना देता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ब्रेव बनाता है। कितनी सारी चीजें आप अकेले हैंडल करते हो, फेस करते हो, और सबसे खूबसूरत बात, इतने सारे नए लोगों से मिलते हो, उनकी लाइफ के बारे में आपको पता चलता है, उनके कल्चर के बारे में। कोई अलग स्टेट के किसी बंदे से आप मिल रहे हो, किसी दूसरी कंट्री के बंदे से आप मिल रहे हो, या फॉर दैट मैटर कोई दूसरी कंट्री आप घूमने गए हो, और कई बार उनसे मिलते मिलते खुद से भी मिल जाते हो। सो कीप ट्रैवलिंग, इसे आप ट्रैवल करने का साइन समझ लो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पहाड़ों में जब हम घूमने जाते हैं तो हमें मजा आता है क्योंकि नज़ारे अच्छे होते हैं, मौसम अच्छा होता है और एक और चीज होती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पहाड़ों में जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी पुराने टाइम में चले गए हैं, जैसे वक्त वहां पे ठहरा हुआ है। लाइफ की पेस स्लो हो जाती है, लोग जल्दी उठते हैं सुबह, आराम से अपने काम निपटाते हैं और दिन जल्दी निपटाते हैं, टाइम से सो जाते हैं। वहां की पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कैब्स वगैरह में भी अक्सर आपको 90s के गाने या पुराने गाने सुनने को ज्यादा मिलते हैं। नदी के बहने की आवाज, पक्षियों का चहचहाना, हवा चलने की आवाज, ये सारी चीजें आपको महसूस होती हैं क्योंकि स्लो डाउन हो जाता है, विच इज सो हीलिंग। तो लाइफ में जितनी भी हीलिंग चीजें हैं, फिर चाहे वो ट्रैवल करना हो पहाड़ों में या फिर अपने लव्ड वंस की हीलिंग हग्स हो, वो सब आपको मिलती रहे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Radio Mirchi New York. It's hot. Mirchi.
1: Iska bana, uska bana, saka bana.
2: Ya bana.
1: Murga, murga. Nafiyat wala murga.
2: Mirchi murga.
3: Hello.
4: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
3: कौन बोल रहा है
4: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
3: क्या मजाक चल रही है?
4: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
5: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू
3: कुकड़ू।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: Thank you.

0: Mirchi.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
3: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
3: हेलो मैडम।
4: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
3: कौन बोल रहा
4: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
3: अभी कोई और बोल रही थी।
4: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
3: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
3: कौन बोल रहा है?
4: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
3: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
3: कौन बोल रहा है भैया?
4: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
3: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
6: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
4: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
3: कोई बोल रहा
4: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
10: थैंक यू।
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: लाइफ में जब सेटबैक्स आते हैं तो उनसे कैसे डील किया जाए, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: I was reading जो अपना अंडर 19 इंडियन टीम का कैप्टन था यश धुल,
4: हाँ 2022 में उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप हमें जिताया था
3: जी। अब आप देखिए एज उन्होंने अपना कितना एफर्ट किया होगा, कितनी मेहनत की होगी और एक मुकाम तक भी पहुंच गए, सफल भी हो गए, एंड सडनली ही स्टार्टेड फीलिंग लॉट ऑफ फटीग, वेरी टायर्ड, कुडंट परफॉर्म टू हिज कैपेसिटी। उनको लगा फिटनेस की प्रॉब्लम है और फिर पता चला कि हार्ट के अंदर होल था। अब जब होल था तो फिर एक डिसीजन लेना जरूरी था कि सर्जरी कराएं, सर्जरी के बाद लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट, फिर कमबैक करना किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए और क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। नॉर्मल व्यक्ति ले लेगा 6 मंथ का गैप, पर एक क्रिकेटर के लिए
4: आपका करियर खत्म हो सकता है,
3: आपका करियर, बिकॉज यू आर जस्ट स्टेपिंग इनटू, अभी आप सीनियर में जाएंगे, आप शायद अपने कंट्री के लिए खेलेंगे। बट ही वॉज वेरी पॉजिटिव, उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने डिसाइड किया कि क्रिकेटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी फिटनेस है। अगर फिटनेस ही नहीं है और हेल्थ ही नहीं है तो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसके बाद भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पर उस मोमेंट पर, उस जर्नी में वो सेटबैक था ना, फिर रुकना, सर्जरी कराना, फिर उन्होंने कहा बहुत जल्दी थी। एज अ क्रिकेटर आपको हो गया 1 महीना, हो गया 6 वीक, हो गया, अब जल्दी होती है कि मैं वापस आऊं। पर जैसे उन्होंने जल्दी करी तो जो बॉडी के फैक्टर्स थे, बीपी थे, वो हिलने लगे, एंड देन अगेन ही हैड टू टॉक टू हिमसेल्फ कि ये जल्दी नहीं हो सकता है, उतना टाइम लगेगा, बॉडी की हीलिंग में लगेगा, फिजिकल प्रिपरेशन में लगेगा, टू गेट बैक लगेगा। लेकिन उन्होंने अभी भी वो चीज नहीं छोड़ी कि मुझे कंट्री के लिए खेलना है।
4: सही बात।
3: उमंग है, उत्साह है, करेज है, सब कुछ है। तो हो सकता है कि वो जल्दी ही खेलेंगे, ये तो हम सबकी दुआएं हैं। पर जरूरी है कि जिस दिन सफल हो जाएंगे ये सारी स्टोरीज बाहर आने लगेंगी। पर यात्रा में सेटबैक तो है, हार्डशिप तो है, उस मोमेंट में कोलैप्स नहीं होना, उस मोमेंट में उसको पॉजिटिवली लेना, उसको भी पार करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस जर्नी में आज आपके सामने क्या सीन है, ओनली दिस मोमेंट इज रियल, प्ले योर पार्ट वेल।
4: सुपर, वेरी नाइस।
3: मैंने आपने अपना रोल अच्छे से प्ले कर दिया, दैट्स ऑल दैट यू कैन डू।
4: क्या बात,
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, लिखते हैं कि नमस्ते सिस्टर श्रेया, मैंने हाल ही में आपको सुनना शुरू किया है और आपकी बातें मुझे सच में बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं। मैं अपने पास्ट को लेकर स्ट्रगल कर रही हूं। जिस इंसान पर मैंने 4 साल ट्रस्ट किया, उसने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के रिलेशनशिप खत्म करके मुझे घोस्ट कर दिया। 4 महीने हो गए हैं, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। मुझे पता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, फिर भी एक सवाल बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है कि कोई बिना कुछ कहे सब कुछ कैसे छोड़ सकता है। जब सामने से क्लोजर ना मिले तो खुद को कैसे हील करें और कैसे मूव ऑन करें?
3: उसको एक खूबसूरत मोड समझ करके भूल जाए। See, the time that you have spent with that person was very good. Closure बाहर से नहीं मिलता, closure खुद को देना पड़ता है। ठीक है, आपके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, आप चाहेंगे ये चीज का आंसर आपको मिले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। लेकिन हम चाह रहे हैं पर वो नहीं बात करना चाह रहे या वो नहीं इस चीज को आंसर कर रहे हैं, तो कितना उसके अंदर और इन्वेस्ट करेंगे, कितना और अंदर ही अंदर अपने साथ नेगेटिव कॉन्वर्सेशन करेंगे। फिर कभी कभी हमारा अपने से फेथ भी खत्म होना शुरू हो जाता है
2: कि मुझे में कुछ कमी होगी।
3: हाँ, मुझ में कोई कमी होगी, मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी। देन वी कीप इमेजिनिंग थिंग्स, वी कीप अज्यूमिंग थिंग्स, वी कीप, और वो हमें वीक करता है ना। हमने कोई रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, इंजॉय किया, बहुत कुछ उससे सीखा, ट्राई भी किया उसको वर्कआउट करने के लिए। आई विल नेवर से कि छोड़ दे। अगर किसी भी रिश्ते के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए वो जब तक बन सके, क्योंकि रिश्ता क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। दो जने होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट अगर होते हैं तो संस्कारों की थोड़ी रास करनी पड़ती है। कभी किसी को झुकना पड़ता है, कभी किसी को थोड़ा सहन करना पड़ता है, कभी किसी को लेट गो करना पड़ता है, तो ही वो रिश्ता आगे बढ़ता है। हर समय आप समझे मैं ही राइट हूँ तो भी वो रिश्ता नहीं बनता है। तो रिश्ते के अंदर एक एफर्ट होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने सब कुछ कर लिया और वो व्यक्ति क्लियरली कहता है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, देन आई डोंट थिंक इट इज फेयर ऑन यू। क्या वो चीज को सोच करके दुख में जाएं, उसका जख्म क्रिएट करें, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएं? इट इज हार्मिंग यू, आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका वर्क, आपका एनवायरमेंट। इसलिए लेट गो, क्लोजर अपने को दे। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, शायद अब शायद इससे भी कोई और अच्छा मिलेगा। मे बी आई डिजर्व समबडी बेटर। वैसे भी अगर कोई ऐसे आपको बिल्कुल छोड़ करके चला गया,
2: उसके भरोसे
3: आप रियलाइज भी कर रहे हैं कि आप उसके साथ जीवन भर तो बिता नहीं सकते हैं, सो देन गिव दैट क्लोजर टू योरसेल्फ। अच्छा ही हो गया, किसी परमानेंट रिलेशनशिप में जाते, मैरिज आदि होती, इससे पहले मुझे इस व्यक्ति के बारे में पता चल गया। ग्रेटिट्यूड फील करे। किसी व्यक्ति की अगर कोई नेगेटिविटी पहले सामने आ जाती है और आप बच जाते हैं, तो ये भी जैसे आपका कोई अच्छा पुण्य कर्म है।
2: आई थिंक उन्होंने क्लोजर ले लिया जब उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। क्लोजर आपको
3: नहीं, क्लोजर तब तक नहीं मिलता है जब तक हम उस दर्द से बाहर नहीं आते
2: या सामने वाला मुझे जवाब नहीं दे,
3: जो भी कारण है। लेकिन दर्द तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना अभी, वो जो भी जवाब देंगे, लेकिन दर्द तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने उसको पकड़ा हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं होल्ड ऑन कर रहा हूँ, आई एम नॉट लेटिंग गो। क्लोजर उस दिन होगा व्हेन आई से आई लेट गो, दे वर ब्यूटीफुल 4 इयर्स
2: एंड आई मूव ऑन।
3: बहुत सुंदर थे, फिर ये सीन हुई, बहुत अच्छी नहीं थी, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। शायद इससे अच्छा कोई सीन लाइफ में आना बाकी है, इससे अच्छा व्यक्ति आना बाकी है, और अब वो चीज अंदर पेन क्रिएट नहीं कर रही है, वो अंदर दुख नहीं दे रही है। यू आर कम्फर्टेबल, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज क्लोजर। आप दर्द में है तब तक वो क्लोजर नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। ओम शांति, मेरा नाम साक्षी है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो जो गलतियां उसने जीवन में की हैं उनका पछतावा क्यों होता है, और कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि आत्मा अभी कुछ और दिनों तक शरीर के साथ रहनी चाहिए थी?
3: सी, जो हम स्पिरिचुअली समझते हैं, पश्चाताप तो कोई शरीर छोड़ने के बाद ही नहीं होता। पश्चाताप माना, हम लाइफ में भी तो कितना पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप क्या होता है कि आपने कुछ किया और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
2: लेकिन जीवन के आखिरी दिनों में शायद जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है तो उस समय शायद बहुत लोग बोलते हैं कि काश मैंने नहीं किया होता, शायद उनका उस तरफ,
3: क्योंकि साथ में क्या जाता है?
2: कुछ नहीं।
3: मे बी उस समय नहीं, कुछ नहीं क्या, साथ में यही जाता है ना, कर्मों का हिसाब किताब। आपको क्यों पश्चाताप हो रहा होता है? क्योंकि आपने बहुत सारी उन चीजों को इम्पोर्टेंस दी होती है जो चीजें साथ में जाने वाली नहीं होती, और उसके लिए आपने अपने वैल्यूज के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया होता है। सी, कर्म इज नॉट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ऐसा नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट है। आप समझे ना, एक लॉ है, जैसे ग्रेविटी का लॉ होता है, आपने कुछ ऊपर फेंका तो वो नीचे आता है। तो कर्म का भी लॉ क्या कहता है, कॉज एंड इफेक्ट, जो आपने किया है उसका एक इफेक्ट है। अब हमने करते समय तो कई बार हम जस्टिफाई कर देते हैं, ये करना जरूरी था, झूठ बोलना जरूरी था, गुस्सा करना जरूरी था, उस समय पर कर दिया। अब जब उसका इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट मेंटल सफरिंग भी तो एक इफेक्ट होता है ना। आप पश्चाताप कर रहे हैं, गिल्ट कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं सब कुछ जीवन में ठीक है, पता नहीं फिर भी क्यों इतनी उदासी है, खुशी क्यों नहीं अनुभव होती है। मेंटल सफरिंग बहुत बड़ा एक कार्मिक रिटर्न है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको अच्छा ही नहीं लगता, आपको जीवन जीने की दिल ही नहीं होती, तो फिर उस समय कई बार पश्चाताप होता है। लेकिन पश्चाताप की जगह रियलाइजेशन ज्यादा अच्छी है। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपने रियलाइज किया कि ये ठीक नहीं था, आगे नहीं करें, बस और क्या।
2: इसमें आप आगे नहीं करें बोलना चाहती है, क्योंकि शी इज टॉकिंग अबाउट समबडी हूज, और शी इज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ,
3: या अगर आप
2: शी इज अबाउट टू पास ऑन,
3: अगर बिफोर आल्सो, सी व्हाट इज सोल गोइंग टू टेक, अगर आपने उस चीज को रियलाइज भी किया ना, तो वो स्मृति भी आपके साथ जाती है।
2: अरे वाह, क्या बात। जब आपने रियलाइज किया तभी
3: सोल अपने साथ संस्कार और हिसाब किताब लेकर जाएगी। तो अगर आपने उस चीज को रियलाइज भी किया तो आपके संस्कार में वो चीज चली जाती है कि ये गलत है। तो इवन अगर आपका कॉस्ट्यूम चेंज होगा तो वो स्मृति आपको एक बार जरूर हिट करेगी कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देन अगेन इट इज अ डिसीजन कि करना है कि नहीं करना, फिर उससे एक नया कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होगा, लेकिन आपके पास एक चॉइस जरूर होगी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर ब्रजेश वडोदरा से लिखते हैं कि नमस्ते, मैं रेडियो मिर्ची और श्रेया दीदी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। आप दोनों को ढेर सारा प्यार। हम अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की ओर कैसे प्रोत्साहित करें? जब हम सतयुग की बात करते हैं तो बच्चे तर्क देते हैं कि मशीन या मेहनत के बिना कुछ भी बनाना संभव नहीं है, तो केवल विचारों से सृष्टि कैसे हो सकती है?
3: देखो, जब हम बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो बच्चों के लेवल पर आकर के करनी चाहिए। पहली बात तो बच्चों के लेवल पर आने का मतलब ये है कि आप अगर चाहेंगे कि वो डेली स्पिरिचुअल क्लास अटेंड करें, हो सकता है शायद वो उतने इंक्लाइंड नहीं हो
2: जी।
3: कुछ दिन पहले मैं एक पेरेंट के साथ मिली थी, तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों के साथ लेकिन 10 मिनट जरूर बैठते हैं।
2: हाँ।
3: कुछ अच्छी बातों के ऊपर डिस्कशन जरूर करते हैं।
2: हाँ।
3: और एक हमारा कॉमन प्रैक्टिस है घर के अंदर कि अब बच्चों को हैप्पी मोमेंट जरूर लिखना है।
2: अरे वाह, क्या
3: वो दोनों स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, हस्बैंड वाइफ, और वो बच्चों को रोज का, बच्चों को भी आदत पड़ गई कि कितने भी थके हुए होंगे, उनके वाइफ सुना रही थी कि वो बच्चे कितने भी थके हुए होंगे
2: लेकिन वो लिखेंगे जरूर।
3: उनको पता है कि पापा ने पूछना ही है। और वो सिंगर है, खरीश मोयल सिंगर है, उनके डॉटर नित्या मोयल एक्टर है, बिजी है, वो लोग परफॉर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनके घर का नियम है, ये उनकी पेरेंटिंग है कि रात को आपको अपना हैप्पी मोमेंट आकर लिखना ही है। तो कहते बच्चों के अंदर भी अभी ये कॉन्शियसनेस है सारे दिन के अंदर कि जा करके कोई हैप्पी मोमेंट लिखना है, तो मोमेंट दिन में होना भी तो चाहिए ना। तो वो दिन भर में अवेयर होते हैं कि मुझे सब कुछ हैप्पीली करना है तो मैं अपने मोमेंट्स के अंदर लिख सकूं। अब वो कल्चर है घर का, तो कल्चर है कि जब आपको लिखना है तो फिर आपको करना भी पड़ेगा। सो दे हैव स्टार्टेड लिविंग देयर लाइव्स विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस,
2: वेरी नाइस,
3: एंड नाउ दे लुक फॉरवर्ड टू इट। दे लुक फॉरवर्ड कि हम एक दूसरे को बताएं कि हमारे दिन का हैप्पी मोमेंट क्या था। तो बच्चे हैं, बच्चे के लेवल पर जाना पड़ेगा। सेकंड, आई रिमेम्बर दिस मदर शेयरिंग कि जब भी वो टिफिन पैक करते हैं तो वो एक स्लिप पेपर के ऊपर कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छी स्टोरी, कुछ एक अच्छा उसके अंदर लिख कर देते हैं। अब वो जो बच्चा है, नाउ ही लुक्स फॉरवर्ड टू इट, धीरे धीरे, जैसे वो चिकन सूप की हमारी किताबें हुआ करती थी, वो बहुत स्पिरिचुअली एम्पावरिंग होती थी। पर कोई एक स्टोरी अगर आपको पता है कि आपको रोज मिलने वाली है, अब कहते बाकी बच्चे पहले देखते थे टिफिन में क्या आया है,
2: अब वो देखते मेरे टिफिन में क्या आया है,
3: अब वो मेरे में क्या, हाँ, क्या स्टोरी है, उस चीज का सबको इंतजार होता है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कुछ ऐसी बातें जो आपको पॉजिटिव बना रही है, कुछ ऐसी बातें जो आपके अंदर पीस, हैप्पीनेस, कंपैशन, फॉरगिवनेस क्रिएट कर रही है, वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम फिलॉसफी और इन सब चीजों की बात करें, अच्छी अच्छी बातें सुनना, देखना, पढ़ना, उसकी एक आदत पढ़ना, वो स्ट्रांग होंगे। अगर हम कहीं स्पिरिचुअली डीप एस्पेक्ट नहीं समझ पाते हैं तो हमारी बुद्धि वहां तक डेवलप नहीं हुई होती है। जैसे अगर एक स्कूल के बच्चे को आप इंजीनियरिंग के क्लास में बिठा दें तो वो जो वहाँ पर सुना रहे हैं वो गलत नहीं है, बच्चे की बुद्धि उतनी डेवलप नहीं हुई होती है। कई स्पिरिचुअल जो बातें होती हैं डीप होती हैं, उसके अंदर तर्क होता है, उसके अंदर रैशनैलिटी होती है, उसके अंदर कुछ लॉजिक होता है, पर मे बी आई एम नॉट उतना बुद्धि से डेवलप कि उसको समझ सकें। अब उसको आप जबरदस्ती उसमें समझाने की कोशिश करेंगे या आर्ग्यू करेंगे तो उनका मन फिर जो अच्छी बातें हैं उससे भी उठ जाता है। इसलिए गो स्लो, जहाँ ए समझना है वहाँ ए समझना है, जहाँ एप्पल समझना है वहाँ एप्पल समझना है। तो ये भी नर्सरी से लेकर इंजीनियरिंग तक एक स्लो प्रोसेस है ना।
2: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला इट्स हॉट
2: ये चाय पावर्ड क्योर्स क्वीन प्रिसिला ऑन रेडियो मिर्ची मिर्ची मॉर्निंग शुरू हो चुका है। यहाँ पर कॉफी गर्म हो या ना हो ड्रामा कंपलसरी होता है। अभी अगर फिलहाल तुम ट्रैफिक में अटके हुए हो या फिर ठंड से जूझ रहे हो, मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में और साथ में ही रहूंगी अगले कुछ घंटों के लिए। और आज का लाइफ का फंडा बड़ा ही सिंपल सा है। लाइफ और समोसा दोनों तभी डेंजरस होते हैं जब अंदर क्या है पता ना हो, और इसे कहते हैं वेरी डीप फ्राइड कोट। Get it? और ऑनेस्टली देसी एक्सपैट लाइफ जो होती है ना वो नेटफ्लिक्स सीरीज से कम नहीं होती है। मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग टीम का एक्सेंट अलग होता है और शाम आते आते माय यार एक कप चाय दे दो वाला एक्सेंट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। आज के शो में है फुल ऑन मिर्चीदार बातें, स्पाइसी गॉसिप एंड ऑफ कोर्स अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट, साथ साथ में थोड़ा सा फील गुड वाइब एंड वो गाने जिन्हें हम बैंगर्स कहते हैं। मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। इंस्टा और एक्स पर भी मुझे साथ में रखो, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vjetvala burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hi, ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
3: आपके पास
1: है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब हम चलने वाले हैं टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा सा टाइम ट्रैवलिंग के लिए। 1846 में यूएस ने मेक्सिको के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया था आज के दिन। फिर 1888 में ब्राजील ने स्लेवरी अबॉलिश की थी, तालियां, ह्यूज हिस्टोरिक विन फॉर ह्यूमैनिटी। और फिर 1917 में फातिमा पोर्टुगल में तीन शेपर्ड किड्स ने वर्जिन मैरी की अपारिशन रिपोर्ट की थी। 1940 में विंस्टन चर्चिल ने अपना आइकॉनिक स्पीच दिया था, ब्लड टॉयल टीयर्स एंड स्वेट वाला। 1950 में फॉर्मूला 1 ऑफिशियली स्टार्टेड इन सिल्वरस्टोन, और तब से दुनिया दो कैटेगरीज में डिवाइड हो चुकी है, पीपल हु अंडरस्टैंड F1 एंड अदर पीपल हु जस्ट नॉड एंड से हां हां वर्स्टैपेन। 1981 में पोप जॉन पॉल II पे अटैक हुआ था इन वैटिकन सिटी। और 1995 में एलिसन हार्ग्रेव्स बिकेम द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन और शेरपा सपोर्ट। और हाँ, हमारे इंडिया ने 1988 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट्स कंटिन्यू किए थे। और इसी तरह की थोड़ी मिर्चीदार मैडनेस के लिए मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी मिर्चीदार गानों का ब्रेक, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। तो इंटरनेट का लेटेस्ट सॉफ्ट बॉय सुपरस्टार कौन है? 15 ईयर ओल्ड वैभव सूर्यवंशी फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। आरआर ने एक सुपर क्यूट वीडियो पोस्ट किया रिसेंटली वे वैभव इज मेकिंग रोटीज ड्यूरिंग आईपीएल 2026। बेटा ओपनिंग भी करता है और किचन में गोल गोल रोटियां भी बनाता है। और सुनो इनका कॉन्फिडेंस लेवल, ही सेड मेरी रोटी इज राउंडेड देन माय मॉम्स रोटी। एक्सक्यूज मी सर, दैट्स ईदर ब्रेवरी और डायरेक्ट इन्विटेशन टू मम्मी की मार एट होम। वैसे हम सबको पता है कि एक्सपैट लाइफ में एक सर्वाइवल स्किल तो हम सब ने सीखा है, वो है वीडियो कॉल पर मम्मी से ये पूछना कि खाना कैसे बनता है। वैसे अगर तुम्हें गोल रोटी बनाने आती है तो तुम अपना प्रूफ मुझे भेज सकते हो इंस्टाग्राम और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब सुनोगे वेदर का हाल चाल। सो बिफोर यू बिकम अ फ्रोजन समोसा, लेट्स फाइंड आउट टेम्परेचर। फिलहाल है 52 डिग्री फारेनहाइट, मतलब ठंडी तो काफी है लेकिन नॉट वूलन्स निकालने वाली ठंडी। क्लाउडी स्काइज है एंड विंड इज मेकिंग इट फील मोर लाइक 50 डिग्री फारेनहाइट। एंड अराउंड नून 12 बजे के आसपास विंडी कंडीशन ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर तुम अपने घर से एक्स्ट्रा हेयर सीरम लेकर नहीं निकले हो तो कंग्रेचुलेशंस, आज तुम्हारे बाल नेचर बनाने वाला है। आज का हाई टेम्परेचर जाएगा 74 डिग्री फारेनहाइट तक एंड कल गया था 68 डिग्री फारेनहाइट तक। यानी कि टेक्निकली आज वेदर थोड़ा सा गर्म है एंड लोएस्ट टेम्परेचर रहेगा 50 डिग्री फारेनहाइट तक। सो लेयर के प्लेयर बनना जरूरी है, साथ साथ में वाटर का इनटेक चेक करते रहना भी जरूरी है। दैट रिमाइंड्स मी आई आल्सो हैव टू हैव वाटर। एंड वाटर से याद आया, अगले 24 घंटे काफी बरसने वाला है आसमान से। दैट्स बिकॉज 6 मिलीमीटर्स ऑफ रेन इज एक्सपेक्टेड। सो अपने अम्ब्रेलाज लेकर ही बाहर जाना, क्योंकि पिछले 24 घंटों की तरह अगले 24 घंटे ड्राई नहीं बल्कि वेट होने वाले हैं। सो कैरी अ लाइट जैकेट विद यू, ऑल्सो योर अम्ब्रेला एंड डोंट फॉरगेट योर एसपीएफ 50++++। फिलहाल मैं भूली नहीं हूँ मिर्ची तक गाने प्ले करने का टाइम आ चुका है। मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, फॉलो मी देयर। एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And that's one of my favorite songs. Hey there, मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में सुन रहे थे Mirchi Mornings. और अब सुनने वाले हो
2: Mirchi Hour का 3.
1: सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिपोर्टेडली आस्क्ड द एसपीजी टू कट हिज ऑफिशियल कॉन्वॉय साइज बाय 50%. साथ साथ में नो फ्रेश फैंसी कार परचेजेस एंड मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन यूज. दिस केम अ डे आफ्टर मोदी अपील्ड टू द नेशन टू सेव फ्यूल एंड वर्क फ्रॉम होम. एंड नंबर टू पर फ्रांस इज नॉट ओके. फ्रेंच पुलिस आर वार्निंग ड्राइवर्स अबाउट अ पॉसिबली ड्रंक डियर रोमिंग अराउंड रूरल रोड्स. अपेरेंटली द डियर मे हैव eaten fermented fruit and started behaving unpredictably. And number three per, gold lovers brace yourselves because Indian jewelry prices just did cardio. Gold and silver futures on MCX shot up after import duty on precious metals increased from 6% to 15%, and silver jumped by 22,000 rupees per kilo within minutes, which is roughly around $260. Gold also climbed over 11,000 rupees, approximately $130. And that's it for Mirchi Hour ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Mujhe sun rahe ho to dekh kar bhi aao jaakar Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vjetvala burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी?
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम

0: नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है
2: सर? ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर। इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना
3: सर। 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है। ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: हाँ। कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
1: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया, नहीं नहीं चाहिए मुझे।
4: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार? आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया। अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ, आप सर रमेश बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
5: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं। अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए। आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
6: थैंक यू
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग डार्लिंग्स, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और इंटरनेट पर एक वेडिंग वीडियो वायरल हो रहा है। आफ्टर स्विगी डिलीवरी शोड अप मिड वेडिंग फंक्शन लाइक इट वाज पार्ट ऑफ द बारात, गेस्ट्स वर शॉक्ड, कैमरा स्टैंड, आंटीज पॉज जजमेंट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स एंड द डिलीवरी गाय जस्ट एंटर्ड विद मेन कैरेक्टर एनर्जी। और फिर स्विगी ड्रॉप द मोस्ट सैवेज रिप्लाई एवर। और कुछ चाहिए? ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट क्विक कॉमर्स एप्स आर नो लॉन्गर सर्विस, they are like family members in India. और Indian weddings में family members तो जोर शोर से participate करते हैं। And God knows उस emergency order में था क्या? Safety pins, phone charger, eyelash glue या फिर Hajmola की गोली? And speaking of शादी season, RK Jewels को big shout out because वहाँ पर मिल रहा है real diamond jewelry at real prices. Zero labor charges है, zero extra charges है, सिर्फ और सिर्फ gold and diamond की pure value तुम्हें मिल रही है। Best quality, best price में मिले तो वहाँ से क्यों ना खरीदा जाए। RK Jewels is the place to be this wedding season. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। फटाफट से जाके मुझे फॉलो करो। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल।

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग माय बर्थडे बेबीज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। आज अगर तुम सेलिब्रेट कर रहे हो तो, और आज का दिन आइकॉनिक बन रहा है विथ दिस पावर पैक्ड लिस्ट दैट आई हैव। ये वो सेलिब्रिटीज हैं जो आज इस धरती पर प्रकट हुए थे। सबसे पहले वीव कॉट म्यूजिक जीनियस स्टीवी वंडर हु सेलिब्रेट्स टुडे। ऑल्सो बॉर्न टुडे वॉज वैम्पायर बॉय टर्न्ड बैटमैन हिमसेल्फ रॉबर्ट पैटिनसन एंड कमेडियन स्टीवन कोलबेर एंड साथ साथ में हमारे बॉलीवुड से सनी लियोनी एंड सिंगर बेनी दयाल आर सेलिब्रेटिंग देयर हैप्पी वाला बर्थडे टुडे। और साथ में है बास्केटबॉल लेजेंड डेनिस रॉडमैन एंड फुटबॉल आइकॉन याया टोरे का भी हैप्पी बर्थडे। सो अगर आज तुम्हारा भी बिग डे है तो ईद तक केक इग्नोर द कैलोरीज एंड रिमेम्बर एज इज जस्ट अ नंबर। एंड नंबर से याद आया, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखो 9033647244, दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर। एंड इंस्टाग्राम और एक्स पर जाके मुझसे कनेक्ट करो, मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम देयर। फिलहाल मिर्ची दार बैंगर्स का टाइम है। हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो जी, मिर्ची मॉर्निंग्स पर खनखनाहट और चमचमाहट की बारी आ चुकी है. नहीं, मैं मेरी आवाज की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट जानने वाले हैं हम.
2: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,700, $4,700 पर ट्रे आउंस के साथ गोल्ड के प्राइसेस आज स्टेबल है. सिल्वर ट्रेडिंग हायर $87 पर ट्रे आउंस, $87 पर ट्रे आउंस के साथ चांदी के भाव अपवर्ड ट्रेंड पर है. इससे पहले गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस और ऊपर जाएं, राज ज्वेल्स के साथ पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स में इन्वेस्ट करें. 1 ounce, 100 ग्राम, किलो बार्स, ऑल अवेलेबल एट राज ज्वेल्स. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट अपडेट. मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मुझे अपने साथ रखो इंस्टा और एक्स पर भी. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: है सांबा, जिंदगी की बरसात है, आज रात है, टाइम पास है।
1: हेलो,
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो, और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज़ दिस,
1: कौन बोल रहा है
2: ये, और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये,
1: क्या मजाक चल रहा है।
2: सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे?

0: मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: राशि, आज पोकर फेस फेल होने वाला है बेब. योर एक्सप्रेशन विल एक्सपोज एवरीथिंग, सो बी ऑनेस्ट बिफोर योर आईब्राउज, गिव द स्पीच फर्स्ट. लकी कलर इज चेरी रेड, लकी नंबर इज 18. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, किसी आर्ग्यूमेंट में सिर्फ फिट इन होने के लिए ओपिनियन मत बदलना. आज योर कॉन्फिडेंस इज हॉटर देन द एयर फ्रायर समोसाज. लकी कलर इज ऑलिव ग्रीन, लकी नंबर इज 4. जेमिनी यानी मिथुन राशि, यू हैव बीन ओवरथिंकिंग हार्डर देन देसी पेरेंट्स choosing wedding venues. Relax bro, solutions are coming. Lucky color is electric blue, lucky number is 27. Cancer yani karak, eyes open, ears open, wallet extra open मत करो. आज एक स्मॉल डिटेल फ्यूचर में पैसा बचा सकती है. लकी कलर फॉर यू इज येलो, लकी नंबर इज 10. लियो यानी कि सिंह राशि, बस मूव ऑन कर लो भाई. आज हाफ हार्टेड एफर्ट्स बिल्कुल मत देना, वरना राइवल्स को अननेसेसरी मसाला मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा. फुल बॉलीवुड मेन कैरेक्टर क्लाइमेक्स एनर्जी चाहिए आज. लकी कलर इज बर्न्ट ग्रीन, लकी नंबर इज 33. वर्गो यानी कन्या राशि, हेल्प मांगने में कोई शर्म नहीं है. ओके, इवन वाईफाई नीड्स अ राउटर समटाइम्स. लकी कलर इज लैवेंडर ग्रे, लकी नंबर इज 21. एंड दैट्स इट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ मिर्ची राशि जोन. अगला हाफ लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में, तब तक तुम सुनो ये मिर्ची दार बैंगर्स और मुझे फॉलो करो जाकर. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टा एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. और व्हाट्सएप करना है तो नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
1: यहाँ की लड़की बाबा, बदन पे साड़ी बाबा, माथे पे बिंदिया बाबा, कानों में बाली बाबा, पैरों में पायल बाबा, होठों पे लाली बाबा, हाय भोली भाली बाबा, हाय शर्मीली बाबा. सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा. ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मैं मिर्ची फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब बारी आ चुकी है
2: मिर्ची राशि जोन
1: इरीज यानी मेष

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा, सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भरतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा यहाँ दिवाली बाबा यहाँ की होली बाबा दुल्हन की डोली बाबा चनिया चोली बाबा मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me.
0: राजे शिवाजी बाबा अकबर बादशाह बाबा महात्मा गांधी बाबा चाचा नेहरू बाबा बाबा अंबेडकर बाबा मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us.
0: ताज महल बाबा चार मीनार बाबा आम का अचार बाबा यहाँ का प्यार बाबा ऐश्वर्या राय बाबा सुष्मिता सेन बाबा ऑल इंडिया रेडियो बाबा डीडी मेट्रो बाबा दूरदर्शन बाबा।

0: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
1: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
0: हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।
2: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
3: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
2: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट मिर्ची, फ्रेश माल,
4: देसी स्वैग और हाई एनर्जी डांस वाइब के साथ सुनो, विया करवा दो जी।

0: इस गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विया करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: हेलो माय देसी बेबीज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड अब
3: मिर्ची राशि जोन।
2: लिब्रा यानी तुला राशि, आज ब्रेन्स ओवर ड्रामा। ओके, किसी राइवल को रिस्पांस देना है तो क्लासी सैवेज रिस्पांस देना, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ WWE कंटेस्टेंट। लकी कलर इज स्काई सिल्वर, लकी नंबर इज 12। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, ये जो क्वाइट टाइप के फ्रेंड्स होते हैं ना, इन्हीं के पास हॉट टी होती है हमेशा। लिसन केयरफुली, ये सीक्रेट इन्फो का जैकपॉट मिल सकता है आज। लकी कलर इज मिडनाइट पर्पल, लकी नंबर इज 39। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, You usually ignore advice faster than terms and conditions. But today, listen to your co-workers, friends, family members. Embarrassment se bach sakte ho. Lucky color is copper brown. Lucky number is 7. Capricorn, yani ki makar rashi. Aaj kuch galat ho gaya hai, to own it gracefully. Growth bhi hot lagti hai kabhi-kabhi, babe. Lucky color is forest teal. Lucky number is 25. Aquarius, yani kumbh rashi. Aaj ek answer suddenly click karega in your brain. Click and you would be like, oh my god, this is so obvious, but tum emotional buffering kar rahe the. Lucky color is neon mint, lucky number is 42. Pisces yani ki mean rashi, open up today. Conversations heal faster than overpriced skincare sometimes. Minor misunderstandings to dissolve ho jayenge aur ho bhi jane chahiye. Lucky color is rose gold, lucky number is 16. And that's it for Mirchi Rashi Zone number 2. Main hu Prisala tumhare saath mein. Mujhe follow kar lo fatafat se. Mirchi Pris is my handle name, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Filhal, stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

अक्सर सोलो ट्रैवल करते हुए जब मैं कपल्स को साथ में घूमते हुए देखती हूँ तो दिल को बहलाने को गालिब यही सोच लेती हूँ कि प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, आजादी ज्यादा प्यारी है ना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, लेकिन ये जो इमोशंस जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, आपके दिल और दिमाग के साथ खेलते हैं, क्योंकि फिर मैं कपल्स को जब स्वीट नथिंग्स में इंडल्ज होते हुए देखती हूँ, खूबसूरत नजारों को साथ में देखते हुए देखती हूँ, कभी कभी लगता है कि हाँ कंपेनियनशिप होनी चाहिए। फिर दिल में ख्याल आता है वो जो गाना हम अभी सुनने वाले हैं। बाय द वे, ये गाना जो कंपोज किया है SD बर्मन साहब ने, इसका जो आइकॉनिक माउथ ऑर्गन वाला म्यूजिक है वो माउथ ऑर्गन प्ले किया था RD बर्मन ने। आई थिंक यू गेस्ट इट राइट, दिस आइकॉनिक सॉन्ग राइट हियर ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: क्या बना?
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
4: हाँ जी बोलिए।
5: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
4: आप मुझे पैसे दोगे? हिडन चार्जेस?
6: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
4: कौन बोल रही है?
5: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
4: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
7: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
4: हेलो कौन बोल रहा है?
5: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
4: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
6: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
4: हेलो मैडम।
5: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
4: कौन बोल रहा
5: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
4: अभी कोई और बोल रही थी।
5: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
4: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
8: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
4: कौन बोल रहा है?
5: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
4: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
9: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
4: कौन बोल रहा है भैया?
5: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
4: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
10: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
5: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
4: कोई बोल रहा
5: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
11: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
12: थैंक यू।
13: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

तो जाम शराबी इनकी लज्जत

भाई वैसे तो लाइफ में इस गाने का वीडियो देखने को हमको बहुत देर बाद मिला, ये जॉनी मेरा नाम का जो गाना है हुस्न के लाखों रंग, क्योंकि छोटे होते इस तरह के गाने आपको मतलब दिखाए नहीं जाते थे ना, चैनल चेंज हो जाता था कि यू वर नॉट अलाउड टू वॉच सच सॉन्ग्स। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन जब भी देखा और पता चला कि इसमें जो डांस कर रही हैं पद्मा खन्ना जी, शी इज द सेम एक्टर जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में कैकई का रोल किया था, तो माई माइंड वॉज ब्लोन। क्या रेंज होती थी पुराने एक्टर्स की भाई। एंड सेम विद अरुणा ईरानी जी, आई थिंक उनको 90s में हमने देखा दिल तो पागल है फिल्म में, वो माधुरी दीक्षित की टीचर का रोल प्ले करती हैं, डांस टीचर का रोल। देन बेटा फिल्म में उनका जिस तरह का रोल था। एंड देन फिर कारवां के गानों में जब उनको देखा तो लगा कि ओ माय गॉड ये क्या टेरिफिक बंदी है। वैसे बोथ पद्मा खन्ना जी एंड अरुणा ईरानी जी क्लासिकल डांस में वेल ट्रेंड रही हैं। कारवां का ये अमेजिंग गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

भाई ये भली भली भोली भोली जो सूरतें हैं ना, यही खेल कर जाती हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो क्या गाना था, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक शेर भी है सदा अम्बालवी का, है जितनी खूबसूरत उतनी ही है बेवफा, देखो बस दूर से ही इन हसीनों की अदा देखो। वैसे बंदियों को, हसीनों को क्यों हमेशा ऐसे बेवफा कहा जाता है यार, बंदे भी होते हैं। तो इसको हम थोड़ा चेंज भी कर देते हैं, हैं जितने खूबसूरत उतने ही हैं बेवफा, देखो बस दूर से ही इन आशिकों की आशिकी देखो। और फिलहाल हम एक आशिक के दिल का दर्द यहाँ पर सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

मैं ना वो गाने सोच रही थी जिनमें पहला लफ्ज आता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ज्यादातर मेरे जहन में 90s के गाने आ रहे थे। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, हम आपके हैं कौन का, या जो जीता वही सिकंदर का, पहला नशा पहला खुमार, या साजन फिल्म का था पहली बार मिले हैं मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया, या संघर्ष फिल्म का पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, फिर वो MB3 का गाना था मेरा पहला पहला प्यार है ये, और एक कुमार सानू का भी था पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा पहली ये मुलाकात है, एक और था पहले प्यार का पहला गम पहली बार है आंखें नम। तो ऐसे सब 90s के गाने ध्यान में आ रहे थे, बहुत पुराने गाने ऐसे कोई खास नहीं आ रहे थे। एक दो जो ध्यान में आए, एक तो लेके पहला पहला प्यार, या आज उनसे पहली मुलाकात होगी, या फिर ये वाला जो हम सुनने वाले हैं 1979 की फिल्म और कौन का ये गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स विद जारू ओनली ऑन

आपको पता है 1982 की फिल्म शक्ति में गाने रखे जाएं या नहीं, इस पर बहुत सोच विचार किया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। क्योंकि राइटर सलीम जावेद का ये मानना था कि इसमें जो मेन किरदार था अमिताभ बच्चन साहब का, वो इतना कोल्ड एंड क्वाइट टाइप का बंदा दिखाया गया था। दिलीप कुमार साहब उनके फादर प्ले करते हैं, उनके साथ उनका जो रिलेशनशिप दिखाया गया था वो एक स्ट्रेंड रिलेशनशिप था। तो ऐसा बंदा जो ऐसे नाराज सा है सबसे, वो गाने थोड़ी ना गाता फिरेगा स्क्रीन पे, ऐसा सलीम जावेद राइटर्स का मानना था। लेकिन डायरेक्टर साहब रमेश सिप्पी, उनको ऐसा लगा कि कुछ गाने होने चाहिए, फिर एंड टाइम पे गाने जो है बनाए गए। और इसका वो जो एक गाना है, क्या सुपरहिट एवरग्रीन गाना है वो, जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। वैसे ये जो इसका एक और गाना हम सुनने वाले हैं, ये भी कोई कम नहीं है। क्या गाया है लता जी ने, क्या लिखा है बख्शी साहब ने, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन। सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: बना।
2: मुर्गा मुर्गा वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
6: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
4: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
6: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
4: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
6: हाँ जी,
4: हाँ बोलिए।
6: 33501।
4: अच्छा
6: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
4: हेलो,
6: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
7: हाय।
6: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
7: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
6: धोबी से
7: पूछ लीजिए।
6: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
4: हेलो
6: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
8: ये बेल जा रही है।
6: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
4: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
6: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501।
4: हेलो,
6: हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
4: किससे पूछे जा रहे हैं?
6: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
4: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
6: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
4: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना आता है।
6: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
8: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
4: किसने दिया मेरा नंबर?
8: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
4: अरे मैं कुकड़ू को।
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बख्शी साहब का गाना हमने सुना जी, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। और जो अगला गाना ये भी बख्शी साहब का लिखा हुआ है, सनी फिल्म का गाना, लोग मिलते हैं जुदा होते हैं और क्या अहदे वफा होते हैं। अहदे वफा मतलब वफा करने वाले, वादा निभाने वाले। इस पर एक शेर भी था, एक बेवफा से अहदे वफा करके आए हैं, अब आके सोचते हैं ये क्या करके आए हैं। क्या आप भी ऐसा करके आए हैं? मत करो बेवफा लोगों से वफा। इसी गाने की आगे लाइन्स हैं ये जो सनी फिल्म का गाना है, जब रुला लेते हैं जी भर के हमें, जब सता लेते हैं जी भर के हमें, तब कहीं खुश वो जरा होते हैं और क्या अहदे वफा होते हैं। जी बिल्कुल नहीं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आपको पता है 1981 की फिल्म लव स्टोरी जब रिलीज हुई थी, जो कुमार गौरव और विजेता पंडित की डेब्यू फिल्म थी, तब विजेता पंडित वॉज नॉट इवन 14 ईयर ओल्ड। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब ये पुरानी फिल्मों में चाइल्ड लेबर कराया जाता था। वो 8th क्लास में थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। इनफैक्ट मैंने ये भी पढ़ा था कि माला सिन्हा चाहती थी कि उनकी डॉटर प्रतिभा सिन्हा इस फिल्म में कुमार गौरव के साथ लॉन्च हो, पर राजेंद्र कुमार जी ने मना कर दिया या बात नहीं बनी, क्योंकि प्रतिभा सिन्हा तब सिर्फ 12 साल की थी। मतलब ये फिल्मी सितारों के जो बच्चे, इनके मतलब पैदा होते से यही सपना हो जाता होगा ना, हीरो हीरोइन बनने का। खैर सपनों का क्या है, सपने तो सभी देखते हैं, किसी के पूरे हो जाते हैं, किसी के टूट जाते हैं, होता है चलता है दुनिया है। फिलहाल ब्रेक है पुरानी जीन्स पर, इट्स अ म्यूजिकल ब्रेक। गाना सुनेंगे हम लव स्टोरी फिल्म का ही। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

अभिमान फिल्म का वो जो सुंदर सा गाना है ना, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वैसे तो उसके सारे गाने सुंदर हैं, लेकिन वो जो गाना है मुझे तो बहुत ही सुंदर लगता है, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, जो गाया है लता मंगेशकर जी एंड मनहर उदास जी ने। तो ये ओरिजिनली ना लता जी के साथ मुकेश जी गाने वाले थे गाना, लेकिन मनहर जी ने एक डेमो वर्जन रिकॉर्ड किया और ये डेमो वर्जन सबको इतना पसंद आया तो यही डिसाइड हुआ कि उन्हीं की आवाज रखी जाएगी। तो मजरू साहब का लिखा हुआ, SD बर्मन साहब का कंपोज किया हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

उफ उफ उफ उफ इंतजार, क्या क्या लिख गए इंतजार पे लिखने वाले। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गालिब ने कहा है, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। विसाले यार मतलब यार से मिलना। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। सीमाब अकबराबादी ने कहा है, उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। मुनीर नियाजी साहब ने लिखा है, ये कैसा नशा है मैं किस अजब खुमार में हूँ, तू आके जा भी चुका है मैं इंतजार में हूँ। चलिए इंतजार पे ही हसन कमल साहब की लिखी हुई ये खूबसूरत गजल सुनते हैं एतबार फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं?
3: हाँ जी बोलिए।
4: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
3: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
3: कौन बोल रही है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
3: क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
3: हेलो कौन बोल रहा है?
4: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है।

0: आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
2: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
0: हाँ जी सर, रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
0: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
1: अभी कोई और बोल रही थी।
0: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
3: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
0: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर इसमें।
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
4: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
0: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
1: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
5: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
0: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
1: कोई बोल रहा
0: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
6: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं। अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
7: थैंक यू।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

सुंदर गाना भूली बिसरी फिल्म का। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना तो देखो मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये किसी ऐसी भूली बिसरी फिल्म का है। सीरियसली, मतलब मुझे ऐसे लगता था ये गाना किसी राजेंद्र कुमार माला सिन्हा टाइप की फिल्म होगी उसका है। बट दिस सॉन्ग बिलोंग्स टू अ मूवी कॉल्ड वापस, 1969 की ये मूवी है, जिसमें अलका अजय नाम के एक्टर्स थे। ऑनेस्टली मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा और मुझे पता चला। बट ये गाना कितना पॉपुलर है, ये फ्रेज कितना पॉपुलर है, एक तेरा साथ कई बार ट्रक के पीछे भी लिखा होता है, 1137 एक तेरा साथ। मजरू सुल्तानपुरी साहब का ये गाना लिखा हुआ था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन, एंड ब्यूटीफुली सन बाय लता जी एंड रफी साहब। और अगला गाना अगेन अ ब्यूटीफुल डुएट बाय लता जी एंड रफी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rg.charu, rg.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स विद जारू, ओनली ऑन मिर्ची। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

ओ भाई, मैंने 1968 की फिल्म दो कलियां वापस से देखी और मजा आ गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और सबसे मजेदार प्यारी उसमें नीतू सिंह जी एज चाइल्ड एक्टर, बेबी सोनिया नाम से वो काम करती थी ना एज अ चाइल्ड एक्टर, तो उसमें वो एक दो जुड़वा बहनों का रोल प्ले करती है जो बचपन में अलग हो जाती है क्योंकि उनके पेरेंट्स अलग हो जाते हैं। फिर बड़ी होकर जब ये दोनों मिलती हैं तो रोल स्विच कर लेती हैं, मम्मी वाली पापा के घर चले जाती है, पापा वाली मम्मी के घर चले जाती है ताकि इन दोनों के पेरेंट्स वापस मिल जाएं। अभी एक्चुअली एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, 1965 की एक तमिल फिल्म थी विच वॉज बेस्ड ऑन 1961 की एक अमेरिकन फिल्म द पेरेंट ट्रैप, विच अगेन 1949 के एक जर्मन नॉवल लीसा एंड लॉटी पर बेस्ड थी। ये नॉवल लिखा था एरिक कास्नर ने। खैर, बैक टू दो कलियां। इस फिल्म का ये गाना सुनेंगे, संग बाय लता जी एंड रफी साहब, कंपोज्ड बाय रवि जी एंड रिटन बाय साहिल लुधियानवी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन

आपको पता है 1963 की फिल्म तेरे घर के सामने, जिसमें देवानंद और नूतन लीड रोल्स में थे, उसमें संजय खान की फर्स्ट वाइफ जरीन खान जो थी, उन्होंने भी एक छोटा सा रोल किया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, जरीन खान, जायद खान और सुजैन खान इनकी मम्मा। एक्चुअली वो एक मॉडल थी, फिर बाद में वो इंटीरियर डिजाइनर भी बनी, लेकिन उन्होंने एक दो फिल्मों में भी काम किया था, जिनमें से एक ये थी तेरे घर के सामने। इसमें उन्होंने जेनी नाम का एक रोल प्ले किया था, बट एक्टिंग उनको ज्यादा रास नहीं आई। हर किसी को एक्टर नहीं बनना होता है, और अभी यहाँ पे आप बात बना दीजिए। मुस्कान को ले जाइए कान तक और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और सुनते हैं खूबसूरत गाना।

0: यार नोस्टैल्जिया इज माय फेवरेट जॉनरा।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप और आपको भी कहीं ना कहीं अच्छी यादों में वापस जाना पसंद होगा, राइट? बस कुछ ऐसी ही पसंद को ध्यान पे रखते हुए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक गिफ्ट मिला है हमें। सो बेसिकली देयर इज दिस लॉन्ग लॉस्ट फिल्म जिसका नाम है द लास्ट टेनेंट, और इस मूवी में लेट इरफान खान साहब अलॉन्ग विद विद्या बालन नजर आ रहे हैं लीड रोल्स निभाते हुए। वैसे इस फिल्म को दो दशक पहले यानी 25 साल पहले ऑलमोस्ट तैयार कर लिया गया था, विच वॉज शेल्व्ड एज वेल, इट वॉज नियरली फॉरगॉटन, बट एक बार फिर से ये मूवी रीसर्फेस हुई है ऑनलाइन, ऑफरिंग ऑडियंसेस अ रेयर चांस टू वॉच अनसीन परफॉर्मेंसेस स्पेसिफिकली बाय द लेट इरफान खान। सो इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है सार्थक दास गुप्ता ने, प्रोड्यूस किया है नीना एंड सार्थक दास गुप्ता ने, विच फीचर्स यंग इरफान खान एंड विद्या बालन। ऑल्दो इस फिल्म को दो दशक पहले कंप्लीट कर लिया गया था बट इट वॉज नॉट रिलीज्ड क्योंकि इस मूवी के कुछ ओरिजिनल फुटेजेस खो गए थे। And now after 25 years, इसको रिस्टोर किया गया है और YouTube पे रिलीज भी किया गया है। तो अगर आपको भी इस एक्टर रूपी जादूगर के परफॉर्मेंसेस पसंद रहे हैं, then don't forget to watch The Last Tenant on YouTube। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, stay tuned।

0: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया हेलो।
1: Who's this?
0: और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे Who's this?
1: कौन बोल रहा है
0: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
0: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
2: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बन गए। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

यार अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। राज एंड डीके की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म, जिसमें हमारे सलमान भाई, बोले तो सलमान खान, लीड रोल निभाते नजर आएंगे। उस फिल्म को लेके स्पेकुलेशंस वर कि भाई फीमेल लीड के लिए करीना कपूर खान को अप्रोच किया गया है, उनको ये रोल ऑफर किया गया है, बट नाउ द रिपोर्ट सजेस्ट कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इस फिल्म की कास्टिंग की शुरुआत जो है वो जून से की जाएगी। तो यूं ही चलते फिरते ऐसी ऐसी अफवाहों पे विश्वास ना किया कीजिए। मैं अप्रूव करूं तभी माना कीजिए, ठीक है। तुम बार टू की बात कर लेते हैं, जिसको लेके बज और भी ज्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि आलिया भट्ट का स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है इन द मूवी। एंड नाउ रिपोर्ट सजेस्ट कि भाई ये सिर्फ एक छोटा मोटा रोल या छोटा मोटा कैमियो नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। बाकी इस फोक हॉरर फ्रेंचाइजी का सेकेंड पार्ट 3rd December 2027 को रिलीज होगा। आई एम लविंग इट। हाँ, जान मेरा दिल का ट्रेलर देख के मेरे दिल से यही आवाज निकली है। स्टारिंग अनन्या पांडे एंड लक्ष्य, द फिल्म प्रॉमिसेस एन इंटेंस रोमांस फिल्ड विद पैशन एंड हार्ट ब्रेक, जो 22nd of May को रिलीज होने वाली है, डायरेक्टेड बाय विवेक सोनी। और ट्रेलर देख के आपको बहुत सारी अलग अलग फिल्मों की याद आएगी, बट इन दोनों की जो फ्रेश पेयरिंग है ना, वो आपको अलग ही रिझाएगी। मुझे तो ऐसा फील हुआ यार। बाकी 22nd of May को दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाना है। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: जिंदगी के गेम्स को जरा साइडलाइन कीजिए और आइए जरा फिल्म ची गेम खेलते हैं।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड यस इट्स टाइम। जो लोग मुझे रोज सुनते हैं उनको पता है कि अब मैं एक गेम खेलूंगी, बॉलीवुड सेंट्रिक गेम होगा ये स्पेसिफिकली, जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ टू स्लाइड इनटू माय इंस्टाग्राम डीएम्स और वहां पे अपना नंबर भेजिए ताकि मैं आपको कॉल करके ये गेम खेल सकूं। तो अभी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे है रजनी मैम, जिनसे मेरा पहला सवाल है कि भाई वो कौन सा हीरो है जिसकी फिल्म ने अभी इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 1,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है?
3: रणवीर सिंह।
0: ओह माय गॉड, रणवीर सिंह की फर्स्ट कोस्टार का नाम क्या है?
3: फर्स्ट कोस्टार अनुष्का शर्मा।
0: अनुष्का शर्मा की फर्स्ट मूवी के कोस्टार कौन थे?
3: शाहरुख खान
0: ने किस फिल्म में? बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, सेनोरिटा वाला डायलॉग मारा है।
3: डीडीएलजे।
0: क्या बात है, डीडीएलजे में काजोल के पापा का रोल किसने किया है?
3: अमरीश पुरी।
0: किस मूवी में बोलते हैं कि डैश खुश हुआ?
3: ये मिस इंडिया।
0: और डायलॉग कौन सा है?
3: मुगन बहुत खुश हुआ।
0: क्या बात है, और मिस्टर इंडिया के लीड एक्टर कौन थे?
3: अनिल कपूर।
0: अनिल कपूर की बेटी का नाम क्या है?
3: सोनम कपूर।
0: सोनम कपूर की पहली फिल्म कौन सी थी?
3: खूबसूरत नहीं, खूबसूरत सोनम कपूर की, ये वैसे दिल्ली 6 तो नहीं थी?
0: नहीं, दिल्ली 6 भी नहीं थी, बट जो अच्छा गेम खेला है आपने उसके लिए आपको ये टैग तो देना बनता है यार।
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: बाकी अगर आप भी बनना चाहते हैं मिर्ची फिल्मची तो फड़ाक दचड़ाक मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके डीएम कीजिए अपना फोन नंबर एंड आई विल गिव यू अ कॉल। बाकी यहां से ही कंटिन्यू होगा आगे का गेम। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

0: watch with me.
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट हिट हिट हिट गाना।
1: हिट

0: only on Radio Mercy, New York. It's hot.
1: Yeah. Meaty Mirchi. Brighten up your day, we will find a way. On Meaty Mirchi, aha.
2: लाइफ के बोरिंग गेम्स को साइडलाइन करके जरा फिल्मी गेम खेलने की कोशिश करो.
3: श्रुति श्रुति
4: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
2: और आपकी इस कोशिश में मैं आपका साथ दूंगी ना. मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप. एंड यस, यू हर्ड इट राइट, इट्स टाइम फॉर मिर्ची फिल्म जी, जहां मैं आपको कॉल करती हूँ टू प्ले दिस बॉलीवुड सेंट्रिक गेम. ऑलरेडी मैंने रजनी मैम को कॉल किया था, बट वो अटक गई ऑन द पॉइंट कि भाई सोनम कपूर की पहली फिल्म का नाम क्या था. अब इसके आगे जो गेम खेल रही है हमारे साथ, उनका नाम है उमा. तो उमा मैम, सोनम कपूर की पहली फिल्म का नाम क्या था?
5: सावरिया.
2: सावरिया में उनके कोस्टार कौन थे?
5: रणबीर कपूर.
2: रणबीर कपूर ने इलियाना डिक्रूज और प्रियंका चोपड़ा के साथ कौन सी फिल्म की थी?
5: बर्फी.
2: एक और फिल्म बताइए जिसमें ये बर्फी शब्द है उसके नाम में.
5: बरेली की बर्फी.
2: बरेली की बर्फी की लीड एक्टर कौन है?
5: कृति सैनन.
2: कृति सैनन की अपकमिंग फिल्म का नाम?
5: नहीं.
2: कोई बात नहीं, चलिए हम बता देते हैं. इसका नाम है कॉकटेल 2, जिसमें वो शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ नजर आने वाली हैं. बट उमा मैम ने जो अच्छा गेम खेला है उसके लिए उनको ये टैग देना तो बनता है ना यार.
0: मिर्ची फिल्मची.
2: अब देखो, आज के मिर्ची फिल्मची तो ढूंढ लिए हैं मैंने, बट कल एक बार फिर से हाजिर होंगी आपके सामने विद द सेम गेम. सो डोंट फॉरगेट टू स्लाइड इनटू माय डीएम्स एंड सेंड योर नंबर माय फ्रेंड. मिर्ची श्रुति के नाम से मैं वहां मिलूंगी आपको. टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: Mirchi. Iskabala, puskabala, sakabala. Yabala. Burga, burga. La vie est la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना,
3: हाँ।
4: धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
3: आपके
1: हो
3: पास
1: क्या है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा? 33501। हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: ये क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना
3: आता है। आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते हैं।

लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग कजरा रे. अब चलिए नंबर दो पे बात करते हैं अबाउट दिस सॉन्ग. भाई आज भी सुनिधि चौहान अपने कॉन्सर्ट्स में जब ये गाना गाती है तो जनता पागल हो जाती है. एंड इमेजिन 2006 में ये फिल्म आई थी, स्टिल दिस सॉन्ग इज सो रेलेवेंट. बाकी धूम 2 का ये गाना है, प्रीतम दा का म्यूजिक है, सुनिधि चौहान लाइक आई सेड उनकी आवाज है एंड समीर के लिरिक्स हैं. बाकी इस मूवी में ऐश्वर्या राय है और वो किस तरीके से ऋतिक रोशन को खा गई है. I mean not literally as in acting and screen presence wise. खैर लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे फेवरेट गाने के बारे में. मतलब रेखा भारद्वाज को ये गाना लाइव परफॉर्म करते हुए नहीं सुना तो क्या सुना भाई. एंड यू वोंट बिलीव, जब मैंने मिर्ची ज्वाइन किया था ना, देन रेखा भारद्वाज का कॉन्सर्ट वॉज द फर्स्ट कॉन्सर्ट ऑफ विच आई वॉज अ पार्ट. गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे फिलहाल. सो दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी ओमकारा जिसमें विशाल भारद्वाज का म्यूजिक है, उनकी धर्मपत्नी रेखा भारद्वाज के साथ साथ राकेश पंडित जी की आवाज है और लिरिक्स हैं द वेरी अमेजिंग गुलजार साहब के. खैर अगर मेरी इस लिस्ट की चर्चा सुनते सुनते आपको भी कोई गाना याद आ रहा है तो मुझे बताओ ना. MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे कनेक्ट करके. इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: यार आइटम सॉन्ग्स हमेशा गंदे नहीं होते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ ये बात और है कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बवाल आइटम सॉन्ग्स हैं। जिनको देख के बवाल भी हो गया था। बट आज पांच के पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसे ग्रेसफुल येट हॉट आइटम सॉन्ग्स की डिस्कशन कर रही हूँ कि आप भी बोलेंगे वाह श्रुति क्या लिस्ट निकाल के लाई है। कह रहे

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: हर आइटम सॉन्ग अश्लील नहीं होता लक्ष्मण।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मुझे तो लगता है एक दिन मेरी ये घटिया मिमिक्री ना मेरी नौकरी खा जाएगी। वैसे हाँ आई अग्री दैट हर आइटम सॉन्ग अश्लील नहीं होता है, इट्स नॉट वल्गर ऑलवेज। हाँ ठीक है, बहुत सारे ऐसे आइटम सॉन्ग्स हैं जो आपको थोड़े से अनकंफर्टेबल कर देते हैं, बट आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ग्रेसफुल येट हॉट सॉन्ग्स की बात कर रही हूँ कि आप भी बोलेंगे वाह श्रुति वाह, दिल जीत लिया यार। तो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक अबाउट द सॉन्ग कचरा रे, नंबर दो पे हमने बात की क्रेजी किया रे के बारे में, नंबर तीन पे नमक इश्क का, और अब है नंबर चार की बारी जिस पे पड़ेगा ये गाना भारी। भाई एक तो ये मूवी ओहो तेजाब फिल्म का ये गाना था बाय द वे, हाँ, जिसमें ये गाना माधुरी दीक्षित के ऊपर पिक्चराइज है, और क्या ही कुर्ता फाड़ गाना है भाई साहब। आज भी ये गाना कोई भी सुन के अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाता है। बाकी गाने में जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, तो सब कुछ परफेक्ट होगा तो कमाल ही होगा ना यार। चलिए जी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नंबर पांच पे इस सुपर डुपर लव्ड सॉन्ग की, हवा हवाई। एक तो श्रीदेवी मैम, उनके नखरे, उनकी अदाएं, उनका हर कुछ सो परफेक्ट। सो 1987 में ये मूवी आई थी मिस्टर इंडिया, जिसमें ये गाना लिखा है जावेद अख्तर ने, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है। अब बताइए क्या हर आइटम सॉन्ग अश्लील वल्गर ऐसा सा होता है क्या? खैर अगर मेरी इस लिस्ट में अपना कोई फेवरेट आइटम सॉन्ग ऐड करना चाहो तो मुझसे कनेक्ट करो ना MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे। इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

यार अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। राजन डीके की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म, जिसमें हमारे सलमान भाई, बोले तो सलमान खान, लीड रोल निभाते नजर आएंगे। उस फिल्म को लेके स्पेकुलेशंस वर कि भाई फीमेल लीड के लिए करीना कपूर खान को अप्रोच किया गया है, उनको ये रोल ऑफर किया गया है, बट नाउ द रिपोर्ट सजेस्ट कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इस फिल्म की कास्टिंग की शुरुआत जो है वो जून से की जाएगी। तो यूं ही चलते फिरते ऐसी ऐसी अफवाहों पे विश्वास ना किया कीजिए। मैं अप्रूव करूं तभी माना कीजिए, ठीक है। तुम्बाड 2 की बात कर लेते हैं, जिसको लेके बज और भी ज्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि आलिया भट्ट का स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है इन द मूवी। एंड नाउ रिपोर्ट सजेस्ट कि भाई ये सिर्फ एक छोटा मोटा रोल या छोटा मोटा कैमियो नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। बाकी इस फोक हॉरर फ्रेंचाइजी का सेकेंड पार्ट 3rd December 2027 को रिलीज होगा। आई एम लविंग इट। हाँ, जान मेरा दिल का ट्रेलर देख के मेरे दिल से यही आवाज निकली है। स्टारिंग अनन्या पांडे एंड लक्ष्य, द फिल्म प्रॉमिसेस एन इंटेंस रोमांस फिल्ड विद पैशन एंड हार्ट ब्रेक, जो 22nd of May को रिलीज होने वाली है, डायरेक्टेड बाय विवेक सोनी। और ट्रेलर देख के आपको बहुत सारी अलग अलग फिल्मों की याद आएगी, बट इन दोनों की जो फ्रेश पेयरिंग है ना, वो आपको अलग ही रिझाएगी। मुझे तो ऐसा फील हुआ यार। बाकी 22nd of May को दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाना है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

मिड वीक का भी ना एक अजीब ही फेज होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब मंडे का शौक निकल जाता है ना और फ्राइडे की एक्साइटमेंट आई नहीं होती है, तब ये जो मिड वीक है ना यानी वेंसडे, ये बिल्कुल मूवी का इंटरवल जैसे लगता है। मतलब स्टोरी तो चल रही है पर क्लाइमैक्स अभी दूर है। और इसी वक्त ना इंसान सबसे ज़्यादा चाय पीता है और सबसे ज़्यादा बस वीकेंड आ जाए यही बोलता रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार इसी मिड वीक में ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज़ भी आते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपका मिड वीक मोटिवेशन क्या है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिड वीक में आपके मूड को अप करने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virpa, la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्ज
3: सर, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
1: अभी कोई और बोल रही थी।
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
1: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
1: कोई बोल रहा है?
2: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
9: थैंक यू
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और पंजाबी तड़का ढोल एनर्जी यानी नगाड़ा नगाड़ा। जी हाँ, एक ऐसा सेलिब्रेशन एंथम है फ्रॉम द वन ऑफ द फेमस एल्बम्स जब वी मेट। मतलब यार, ये एक ऐसा एल्बम है ना जिसका हर एक गाना दिल को छू जाता है। और शाहिद ने जब इस गाने की शूटिंग की थी ना, तो उस टाइम पे ना उन्होंने अपने शूज़ के अंदर एक कॉटन रखवाई थी, क्योंकि स्टेप्स इतने ज़्यादा विगरस थे और इस गाने की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उनके पैर इतने ज़्यादा गर्म हो जाते थे कि बस उनको लगता था कि अब एक कॉटन रख दो ना तो एकदम राहत मिल जाती थी, क्योंकि गाने का बाउंस, गाने का ठहराव और गाने का फनी कुछ ऐसा था। वैसे यार, ये गाना जो सोनू निगम की आवाज़ में गाया गया है इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ जब वी मेट, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि आपका जब वी मेट का फेवरेट गाना कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। लेकिन इस शाम की शुरुआत करते हैं विद नगाड़ा नगाड़ा राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

गाने शादी में बज जाते हैं और फिर डांस फ्लोर की हिस्ट्री बन जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट, जब वी मेट के एल्बम के बारे में बात हो रही है और इसका गाना मौजा यार कभी भी सुन लो मौज ही लेकर आता है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रैक है ना जहाँ मीका सिंह की वॉइस ने लिटरली पार्टी को इग्नाइट कर दिया था। और एक बहुत ही मस्त बात है इस गाने की, मतलब इसका जो हुक स्टेप है उसको कोरियोग्राफर ने ऑन द स्पॉट क्रिएट किया था, क्योंकि यार शाहिद कपूर और हमारे जो करीना कपूर खान है वो इतने ज़्यादा हाइपर फन मोड में थे कि यार उनको देख के उन्होंने जो ओरिजिनल कोरियोग्राफी थी वो कैंसिल करके नई कोरियोग्राफी ऑन द स्पॉट बनाई और उनके कैरेक्टर्स को मैच करने जैसी जो उनकी एनर्जी थी उस एनर्जी को मैच करने जैसी उन्होंने कोरियोग्राफी बनाई थी। और तभी तो यार ये गाना 2007 से लेकर आज तक हर ढोलकी, हर संगीत, हर आफ्टर पार्टी का VIP मेंबर बन चुका है। जैसे कि आपने मौजा ही मौजा पे कभी डांस किया, टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं मौजा ही मौजा फ्रॉम वन ऑफ द फेमस एल्बम्स जब वी मेट। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जो आपको बहुत पसंद है और जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। फिलहाल सुनते हैं जब वी मेट का मौजा ही मौजा राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बात हो रही है ऐसे एल्बम की जो 2007 में रिलीज हुई थी, जब वी मेट, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और फिलहाल बात हो रही है एक ऐसे गाने की जो आपको सीधा मनाली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जी हाँ, श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये इश्क हाय, ये सुनते ही लगता है कि मनाली की सारे रोड्स सडनली म्यूजिकल हो चुके हैं। कि श्रेया घोषाल की प्लेफुल वॉइस के साथ शूटिंग के सेट्स पर भी एक्चुअल ढोलक वाले लोकल्स ज्वाइन हो गए थे, और इसीलिए इस गाने में एक रॉ पहाड़ी एनर्जी है। वैसे यार, करीना को तो वन टेक गीत कहा जाता ही है, लेकिन इस सॉन्ग को सुनने के बाद ना हर एक इंसान के दिल में, हर एक लड़की के दिल में गीत डांस जरूर करती है। वैसे क्या आपको भी ये गाना पसंद है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। क्योंकि यार इतने सारे हिट एल्बम्स है, और ये जो हिट एल्बम है जब वी मेट, उसके इतने सारे खूबसूरत गाने हैं। तो ऐसा भी कोई गाना है जो आप यहाँ पर प्ले करवाना चाहते हो तो जल्दी से मुझे बताना। और फिलहाल बजाते हैं ये इश्क हाय राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

दोस्तों, आज की डेट पे ना किसी रोमांटिक बॉलीवुड राइटर का डेफिनेटली कंट्रोल होगा, क्योंकि आज है 13th मई। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार 13th मई बहुत ही सिंपल सा डेट लगता है, लेकिन हमारे देसी ब्रेन का टैलेंट देखो, मई 13th को भी ना हम सीधा कन्वर्ट करते हैं मैं 13 पे। तो आज का जो पूरा दिन है, कपल्स को अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है अपने किसी लव्ड वन को मैं 13 मैं 13 मैं 13 बोलने का। और जो भी सिंगल है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि यार किसी को प्यार करते हो तो सीधा सीधा बता दो कोई गाने के साथ ही सही कि यार मैं तो बस तेरा हूँ। और बॉलीवुड ने वैसे तो हमें इतने सारे डेट्स को फिल्मी बनाना सिखाया ही है। कभी हम 11-11 पे विश करते हैं, कभी रैंडम लिरिक्स पे इमोशंस बताते हैं, और अब डेट्स भी रोमांटिक हो चुकी है। तो आज का जो सवाल है बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर आपको मैं 13 पे एक बॉलीवुड सॉन्ग डेडिकेट करना है तो वो कौन सा होगा? थोड़ा सोचिए प्लीज़, इस चीज़ को ना चैट जीपीटी या फिर गूगल मत कीजिए। बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है ये, बहुत ही सिंपल सा चैलेंज है ये, कि अपना दिमाग लगाओ और मैं 13 पे जो भी बॉलीवुड गाने हैं मुझे ज़रूर बताओ। टेल मी ऑन इंस्टाट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और बजाते हैं वही गाने आज के इस खास डेट पर, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
1: Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हू इज दिस,
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: यार ये मिक्स्ड वेदर का क्या करे। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और न्यू जर्सी के मिक्स्ड वेदर का ना अलग ही स्वैग है। मतलब गर्मी में बारिश गिरती है, बारिश में ठंड लगती है, ठंड में अलग से ह्यूमिडिटी भी फील होती है और ह्यूमिडिटी में अलग से गर्मी भी लगती है। मतलब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। और ऐसा ही हाल है कभी कभार हमारे यहाँ के US मार्केट्स का भी। कभी भी मॉर्गेज रेट्स बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो फिलहाल ये मिक्स्ड वेदर में मॉर्गेज रेट का क्या हाल है, पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से। ओवर टू यू बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज।
1: गुड इवनिंग मिस्टर लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। क्लाउडी आउट देयर एंड प्रोबब्ली रेन टुनाइट। अप्रैल्स होलसेल इन्फ्लेशन फार आउटस्ट्रिप एक्सपेक्टेड रीडिंग्स, स्क्रूटिनाइज्ड फॉर द ईरान वॉर्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड मार्केट्स आर मिक्स्ड टुडे। मॉर्गेज रेट्स जस्ट नज अप स्लाइटली टुडे एंड हियर व्हाट दैट मींस फॉर यू। Rates are still volatile, but don't let that spook you. This daily shifts in is normal like the tide. They rise and fall with the economic currents. Great time to get pre-approved before listing surges. If you've been waiting for the right moment, this could be it. Buying your dream home, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate 6.25%, 20-year fixed mortgage rate 6%, 15-year fixed mortgage rate 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. Friends, refinancing are still active and well at the same time. Home values are on the rise, creating incredible opportunities to cash out or consolidate debts by paying off high interest rate credit card debts, student loans, or private loans. And don't forget to ask us about our zero closing cost refinance option. So friends, buying your dream home or refinancing, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

दोस्तों आज है मई 13, यानी ऑफिशियली मैं 13 डे। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, हम मना रहे हैं मैं 13 स्पेशल, जहाँ आप मुझे बता रहे हो वो बॉलीवुड गाना जिसमें मैं 13 ये वर्ड यूज़ हुआ है। और अभी एक मैसेज आया है फ्रॉम प्रिया जयवर्धन, जो कि रहती है एडिसन में, और वो कहती है कि उनके हस्बैंड ने उनके लिए ये गाना डेडिकेट किया था, मैं तेरा बन जाऊंगा, फ्रॉम कबीर सिंह, जब वो जस्ट US मूव हुए थे शादी के बाद, क्योंकि नई कंट्री, नया जॉब, एम्प्टी अपार्टमेंट, और उन दोनों का पहला वीकेंड बस मैट्रेस पे बैठ के चाय पीते हुए यही गाना सुनते हुए गया था। और ऑनेस्टली ये गाना है भी इतना स्पेशल, मतलब कबीर सिंह फिल्म में ये गाना सिर्फ एक रोमांटिक मोड ही नहीं था, इट वॉज़ अबाउट बिल्डिंग अ लाइफ टुगेदर इन स्मॉल मोमेंट्स, रूटीन मोमेंट्स, कंफर्टेबल मोमेंट्स। तो चलिए प्रिया जी, आपके लिए हम बजाने वाले हैं मैं तेरा बन जाऊंगा फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह। और दोस्तों आप भी मुझे बताना कि वो कौन सा बॉलीवुड गाना है जिसमें मैं तेरा वर्ड यूज हुआ है, जो आपके दिल के बहुत करीब है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार बॉलीवुड में इतने सारे गाने हैं जो आज की डेट को रिफ्रेस करता है मई 13 यानी मैं 13। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

Radio Mitchie, New York. It's hot.

0: दोस्तों मई 13 का सेलिब्रेशन अभी भी जारी है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज हम बना रहे हैं मैं तेरा स्पेशल, मतलब वो सारे गाने बॉलीवुड के जिसमें मैं तेरा ये वर्ड यूज़ होता है, आप मुझे बता रहे हो बिल्कुल भी चैट जीपीटी या गूगल करके नहीं, अपनी मेमोरी से, अपने दिमाग से। और अभी अभी मैसेज आया है फ्रॉम राहुल पांडे जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। ही सेज कि यार कॉलेज डेज पे ना एक गाना था जिसमें वो बहुत ज़्यादा ग्रूव करते थे एंड दैट वॉज फ्रॉम द मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी मैं तेरा धड़कन तेरी। 2009 का वो एल्बम ही अलग था यार, यानी रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की फ्रेश केमिस्ट्री और ऊपर से केके और सुनिधि चौहान की आवाज़। वैसे यार केके की आवाज़ में ना उतनी ज़्यादा एफर्टलेस सॉफ्टनेस थी और सुनिधि का प्लेफुल एनर्जी टच इस गाने को ना मतलब बहुत ही ज़्यादा पेपी बनाता था। और लिरिक्स भी देखो जिसके, जैसे कि हम मना रहे हैं मैं तेरा यानी 13 में, तो मैं तेरा धड़कन तेरी सिंपल जी लाइन है लेकिन फुल ऑन सिंसियरिटी थी। वैसे वो फेज ही बहुत अमेजिंग था बॉलीवुड का जब रोमांस थोड़ा इनोसेंट था, थोड़ा ड्रीमी और फुल मेलोडी ड्रिवन था। वैसे अभी भी ऐसे गाने बनते हैं लेकिन वो बात ही अलग थी। तो दोस्तों चलिए आप भी मुझे बताइए कि विच इज़ दैट सॉन्ग जिसमें मैं तेरा यूज़ हुआ है और जो आपको आपके कॉलेज डेज पर लेके जाता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और बिल्कुल भी चीटिंग अलाउड नहीं है, चैट जीपीटी या फिर आप गूगल यूज नहीं कर सकते, खुद याद कीजिए। बहुत सारे बॉलीवुड गाने हैं और फिलहाल बजाते हैं राहुल जी ने सजाया हुआ ये गाना मैं तेरा धड़कन तेरी फ्रॉम द मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
1: इट्स मी ऑन द ट्रैक, लेट्स गो।

0: precaution.
1: Before buying investments are subject to market risk. Read all skin related documents carefully.
2: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
3: दोस्तों मई 13th का मतलब आज हमने बना दिया है मैं तेरा डे। जी हाँ, शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी। और मई 13th को हमने रिवाइज करके मैं तेरा स्पेशल दिन बना दिया है, जहाँ आप मुझे बता रहे हो बॉलीवुड के वो गाने जिसमें मैं तेरा ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो अभी अभी मैसेज आया है फ्रॉम मल्हार, जो कि रहते हैं साउथ प्लेनफील्ड में, और उन्होंने कहा है कि मैं तेरा जबरा फ़ैन हो गया। ये गाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। पहले तो ये गाना इतना ज़्यादा है, और दूसरा ये उनके जो आइडल है शाहरुख खान, उन पे बेस्ड ये गाना है, जो वो हर बार कॉलेज में सुनते थे, दोस्तों के साथ सुनते थे, और शाहरुख के तो बड़े फैन ये है ही। और जब मैं तेरा जबरा फैन हो गया रिलीज हुआ था, तो यार उनका ये अनऑफिशियल बोलते हैं ना, शाहरुख खान के लिए एक एंथम बन गया था। और ऑनेस्टली मैं तेरा का मतलब सिर्फ रोमांस थोड़ी ना होता है। कभी किसी एक्टर का फैन, किसी टीम का सपोर्टर, किसी ड्रीम का बिलीवर, यार हम सब लाइफ में किसी ना किसी चीज के जबरा फैन जरूर होते हैं। तो चलिए आज नकाश अजीज की एनर्जेटिक आवाज में इस गाने को सुनते हैं, जबरा फैन फ्रॉम द मूवी फैन, शाहरुख खान के लिए जो बनाई गई थी मल्हार की रिक्वेस्ट पर, राइट हियर ऑन मिर्च। और दोस्तों आप भी मुझे बताना कि वो कौन सा गाना है जिसमें मैं तेरा ये वर्ड यूज हुआ है। लेकिन चीटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, गूगल नहीं कर सकते, चैट जीपीटी नहीं कर सकते, सिर्फ असली बॉलीवुड मेमोरी पावर यूज करो और जल्दी से डीएम करो @RJMirchiSiddhi SIDDHI ऑन दिस मई 13th, यानी मैं तेरा स्पेशल डे। और तब तक के लिए सुनते हैं जबरा फैन फ्रॉम द मूवी फैन, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Milchi, murga.
2: Hello.
3: Hi, ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: विकी जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किससे पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह
4: नहीं, तो आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं खुकड़ू को।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। वैसे दोस्तों आज मैं 13 स्पेशल यानी मैं 13 स्पेशल तो चल ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ फिलहाल गोल्डन आर की जो गोल्डन बातें होती है यहाँ पर बॉबी बंसल जी के साथ फ्रॉम राज ज्वेल्स, वो भी जारी होने वाली है इन आर स्पेशल सीरीज गोल्ड डीकोडर, जहाँ होती है थोड़ी चमक और थोड़ी समझ। तो चलिए स्वागत करते हैं बॉबी जी का। नमस्ते बॉबी जी और स्वागत है आज की जो स्पेशल डेट है मई 13th यानी मैं तेरा, जो आज हमारा जो पूरा इवनिंग है इसी डेट के अराउंड घूम रही है, तो उसी के लिए आपके आपका आज की इस बहुत ही खास शाम में स्वागत है।
1: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू आल्सो सिद्धि जी। और मेरे को तो लगता है तेरा तो मेरा तो फेवरेट नंबर है, तेरा मेरा तो मेरा तेरा, सो तेरा नंबर इज ऑलवेज माय फेवरेट। बट अगेन आज मई 13 को गोल्ड की प्राइस 4690 4690 डॉलर पर ट्राई आउंस ट्रेड कर रहे हैं। सिल्वर के प्राइसेस एग्रेसिवली अपवर्ड ट्रेंड पर हैं, अबाउट 87 to 88 डॉलर सिल्वर ट्रेंड ऊपर जा रही है। सो गोल्ड से ज्यादा सिल्वर एग्रेसिवली अपवर्ड ट्रेंड पर है। इससे पहले गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जाए, राज ज्वेल्स की स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शंस जिसके अंदर 0% डाउन, 0% इंटरेस्ट, आज 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी एंड GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड घर लेके जाए बिना किसी हिडन फी के। और सिद्धि जी मैं तैयार हूँ आपके उस खूबसूरत सवाल के लिए।
0: तो बॉबी जी देखिए, मैं तेरा तो बहुत सारे लोग अपने गाने डेडिकेट कर रहे हैं सबको, लेकिन आप हमारे गोल्ड एक्सपर्ट तो है ही यहाँ पर, नॉट जस्ट US के लिए बट इंडिया में जो इतनी सारी न्यूज़ आ रही है। कल आपने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई, क्योंकि जब वो मित्रों वाली अनाउंसमेंट हुई थी कि गोल्ड खरीदना डिस्करेज किया गया है इंडिया में, उसी का और एक जो और एक बड़ा सेगमेंट आज पता चला है कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी 15% लगा दी है टू डिस्करेज बाइंग गोल्ड। तो ऐसे में फिर एक बार आपसे यही पूछूंगी कि हमारे जो US के गोल्ड बायर्स हैं उन पे क्या इसका असर पड़ेगा, क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए।
1: देखिए बहुत खूबसूरत सा सवाल है, और पहली बात इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डिस्करेज कर रही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द गोल्ड इंपोर्ट होता है इनटू इंडिया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ऑब्वियसली गोल्ड को खरीदने के लिए रुपीज नहीं डॉलर्स देने पड़ते हैं। सो द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू सेव इट डॉलर्स, अपनी फॉरेन एक्सचेंज सेव करना चाहते हैं, इसलिए वो डिस्करेज कर रहे हैं गोल्ड खरीदने में। और इसका परिणाम ये है कि उन्होंने 15% कस्टम्स ड्यूटी लगा दी है ऑन द गोल्ड प्राइस, 24 कैरेट का जो गोल्ड प्राइस है। सो बेसिक सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो हिंदुस्तान और अमेरिका के गोल्ड के प्राइसेस में 15% का डिफरेंस है। मुझे लगता है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम जो यहाँ पे रहते हैं बिकॉज वी मेक मनी इन डॉलर्स, स्पेंड इन डॉलर्स, तो हमारे को उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वी कैन स्टिल बाय गोल्ड एट द सेम प्राइस। तो दोस्तों हमारे को भी बहुत कॉल आ रही है, अगर इंडिया में गोल्ड खरीदने पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है उससे अमेरिका में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना चाहे गोल्ड खरीद सकते हैं, आपकी अमेरिका में गोल्ड खरीदने का प्राइस इंडिया से 15% चीपर होना है 24 कैरेट गोल्ड का। सो दोस्तों हमारे जो मन में भावना होती थी हमेशा कि हम इंडिया जाएंगे तो सस्ता ले आएंगे, पहले तो अपना फैक्ट्स आप करेक्ट कर लीजिए कि गोल्ड के प्राइसेस अमेरिका में हिंदुस्तान से अबाउट 15% सस्ते हैं। कैसे? राज ज्वेल्स की टीम आपको एजुकेट करने के लिए तैयार है, आइए राज ज्वेल्स के साथ नोइंगली एंड राइटफुली गोल्ड में इन्वेस्ट करें। सिद्धि जी थैंक यू वंस अगेन एंड हैप्पी इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।
0: थैंक यू बॉबी जी। तो दोस्तों देखिए, आपको थोड़ा भी अगर डाउट था कि इंडिया में जो रूल्स चेंज हुए हैं या जो भी एनकरेजमेंट या डिस्करेजमेंट है फॉर गोल्ड बाइंग, उससे यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आपका जवाब आपको मिल चुका है। अगर फिर भी कोई सवाल है तो मुझे जरूर इंस्टा कीजिए @RJMirchiSiddhi SIDDHI, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल, गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफ़र की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।
1: ओ कुड़ियो गुड़ किन खालिया
2: स्वीटी,
1: गुड़ वाली चाह किन पीती
2: स्वीटी,
1: वो जिदा नाड़ा किन खिचिया।

दोस्तों आज का मई 13 स्पेशल फुल ऑन नॉस्टैल्जिया ट्रिप बन चुका है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, बिना गूगल किए, बिना चैट जीपीटी किए आप इतने सारे गाने बता रहे हो जिसमें मैं तेरा ये वर्ड्स यूज हुए हैं। तो यही सेलिब्रेट कर रहे हैं हम विथ मैं तेरा स्पेशल। और अभी अभी एक मैसेज आया है फ्रॉम अदिति जो कि रहती है प्रिंसटन में, एंड शी इज सेइंग कि यार ये गाना जो है मैं तेरा हीरो ओ ओ ओ ओ ये गाना बहुत ही स्पेशल है उनके लिए, क्योंकि उनके तब बॉयफ्रेंड ने ये गाना उनके लिए डेडिकेट किया था कॉलेज के एक फेस्ट में। मतलब बोलते हैं ना, वो माइक पे अनाउंस करते हुए। और वैसे तो अदिति बहुत ज़्यादा फ्लैटर हुई थी क्योंकि वो गाना कहना चाहता था कि मैं तेरा हीरो, लेकिन गाने की शुरुआत और गाने के कुछ और लिरिक्स बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थे, जिस वजह से उनके बॉयफ्रेंड को तब बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी। तो जी हाँ, कभी कभी हम गाने का टाइटल या हुक लाइन सुन के बाकी लिरिक्स इग्नोर कर देते हैं और फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये गाना भी कुछ ऐसा ही था, मैं तेरा हीरो या फिर सुबह होने ना दे, द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी देसी बॉयज, बजाते हैं अदिति के सुझाव पर। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो कि ऐसे कौन सा गाना है जिसमें मैं तेरा यूज हुआ है बहुत बार या फिर एक बार, लेकिन चीटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपकी बॉलीवुड की मेमोरी का आज टेस्ट हो रहा है, तो जल्दी से मुझे डीएम करो RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और अपना गाना बताओ। क्योंकि यार अगर असली बॉलीवुड फैन हो तो आपको तो बहुत सारे गाने पता होंगे जिसमें मैं तेरा यूज हुआ है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। तब तक के लिए देसी बॉयज का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों आज का मैं तेरा स्पेशल अब प्रॉपर बॉलीवुड ट्रेजर हंट बन चुका है। शाम शाम का लाइक सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं May 13th यानी मैं तेरा स्पेशल, क्योंकि यार इतने सारे बॉलीवुड के गाने हैं जिसमें मैं तेरा ये वर्ड यूज हो चुका है। और अभी अभी मैसेज आया है फ्रॉम निखिल जो कि रहता है सिकॉकस में, एंड ही पिक्ड तू मेरी मैं तेरा इस एल्बम का गाना, टाइटल ट्रैक तू मेरी मैं तेरा, क्योंकि यार उन्होंने कहा कि उनकी फियांसे ने एक बार मजाक में गाना बजाया था आफ्टर वन सिली आर्ग्यूमेंट विद द कैप्शन कि यार कंफ्यूजन कितना भी हो एंड में तू मेरी मैं तेरा ही रहूंगा। और ऑनेस्टली विशाल ददलानी की एनर्जी इस ट्रैक में फुल ऑन बिंदास है, क्योंकि गाना जो है ना प्रॉपर मॉडर्न बॉलीवुड वाइब देता है, थोड़ा सा क्वर्की है, थोड़ा सा ड्रामेटिक और फुल ऑन कैची हुक के साथ। और वैसे भी बॉलीवुड को जो कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरीज और कन्फ्यूजिंग टाइटल का नेशनल अवार्ड तो मिलना ही चाहिए, तो ये जो गाना है इसका जो एल्बम है यानी जो मूवी का टाइटल ट्रैक है उसका नाम ही तू मेरी मैं तेरा, मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी निखिल जी को। सो चलिए निखिल जी के सुझाव पर बजाते हैं तू मेरी मैं तेरा। और दोस्तों आप भी बता सकते हो कि यार वो कौन से बॉलीवुड गाने हैं जिसमें तू मेरी मैं तेरा, सॉरी नॉट तू मेरी सिर्फ मैं तेरा, क्योंकि यार 13 में है ना तो मैं तेरा का स्पेशल चल रहा है यहाँ पर। तो जल्दी से अपने जवाब भेजिए @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और तब तक के लिए हम बजाते हैं तू मेरी मैं तेरा फ्रॉम द एल्बम तू मेरी मैं तेरा। माई गॉड टंग ट्विस्टर होने वाला है मेरा। तो राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Burka. Navir bala burka. Mirchi burka.
1: Hello.
2: Sir, very good evening. Man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ। हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
1: अभी कोई और बोल रही थी।
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
1: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
1: कोई बोल रहा
2: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
9: थैंक यू
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
11: Sham Shada, let's do not donkey, have a funky time.
12: दोस्तों आज का मैं तेरा स्पेशल फुल ऑन मेमोरी लेन बन चुका है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, आज है May 13th, यानी हम मना रहे हैं मैं तेरा स्पेशल, क्योंकि बॉलीवुड में इतने सारे गाने हैं जिसमें मैं तेरा या तेरा मैं यूज हुआ है, और आप बहुत ही ऑनेस्टली मुझे सारे जवाब भेज रहे हो, सारे सजेशंस भेज रहे हो। एंड ऐसा ही एक सजेशन आया है फ्रॉम रोहन, जो कि रहते हैं न्यूयॉर्क में, और उन्होंने कलंक मूवी का जो टाइटल ट्रैक है मैं तेरा, 2019 में आई हुई ये मूवी, उसका गाना सजेस्ट किया है। और काफ़ी सॉफ्ट सॉन्ग है, काफ़ी स्लो सॉन्ग है, लेकिन रोहन कहते हैं कि जब भी ना ऐसे लोनली ट्रेन राइड्स होते हैं उस पर गाना मैं रिपीट पे चलाता हूँ, क्योंकि अरिजीत सिंह की वो मेलोडियस वॉइस और उसमें जब वो मैं तेरा रिपीट पे गाते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेमेटिक फील देता है, कि जैसे यार लाइफ तो टफ है बट फिर भी फिल्मी है। तो ओहो क्या खूब अंदाज में आपने बयां किया है ये गाना रोहन। तो चलिए प्रीतम के म्यूज़िक और अरिजीत सिंह के इमोशनल टेक्स्चर के साथ इस गाने को प्रॉपर लेट नाइट हेडफोन सॉन्ग

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरे मुनु, लड़की लोग का नाटक तेरे को क्या मालूम, बहुत पापड़ बिलने पड़ते हैं यार।
1: ये पापड़ का प्यार से क्या तालुक?
0: अरे कहावत है यार।
1: अरे

ऑफिस के डेडलाइन से थोड़ा काम डाउन होना चाहते हो तो बस एक चम्मच दीप दही काफी है। शमशान द लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और यार ऑफिस के डेडलाइंस, बॉस की बड़बड़ से दिमाग अगर गर्म हो चुका है तो उसे ही कूल करने के लिए दीप दही के साथ एक ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए, क्योंकि फार्म फ्रेश, हॉर्मोन फ्री और बिल्कुल घर जैसी टेक्सचर वाली यही है वो दही जो देता है प्योर कम्फर्ट फूड। और अगर लस्सी ना सही, पर अगर रात के डिनर पे एक प्लेट पुलाव और उसके साथ दीप दही के साथ बनाया हुआ वो बूंदी का रायता, ओ हो, बस ऐसा सुकून, ऐसी शांति मिलती है ना कि क्या बताए। तो आज डिनर में हो जाए दीप दही का कूलनेस का क्लासिक फॉर्मूला, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शाम दालक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @ RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।